मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के इस श्रावण मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त 2026 ईस्वी, प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
1: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए।

0: छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तनपोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands.
1: अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जन जन जुड़ गए। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपने छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वेराइटीज होती है। आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
0: नेशनल

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज का चिंतन सुनिए यशपाल सिंह राठौड़ से। विषय है मन की प्रसन्नता।
1: भगवान महावीर ने कहा है, अपने आप को सदा प्रसन्न रखो। प्रसन्नचित्त व्यक्ति की जहाँ कार्य क्षमता बढ़ती है, वहीं उसकी आयु में भी वृद्धि होती है और बुद्धि विकसित होती है। प्रसन्नता का अर्थ मात्र सुख, हर्ष या खुशी नहीं है, वह सब पदार्थ सापेक्ष है। पदार्थ से जुड़े सुख, हर्ष आदि के साथ दुख और विषाद भी निश्चित होते हैं। प्रसन्नता वस्तु निरपेक्ष होती है, वह चित्त की पवित्रता या स्वच्छता का पर्याय है।

0: और उसका उदय होता है राग द्वेष मुक्त चेतना में। राग द्वेष और मोह चेतना जितनी क्षीण या मंद होती है उतनी ही प्रखर होती है प्रसन्नता की अनुभूति। मानव मन की दो अवस्थाएं होती हैं, प्रफुल्लता या उदासीनता। ये उदासीनता मध्यस्थता या समता से भिन्न है, यह है निराशा की संतति है। खिले हुए और मुरझाए हुए फूल में जितना अंतर होता है उतना ही अंतर होता है प्रफुल्लता और उदासीनता में। प्रसन्नता चित्त का विस्तार है और उदासी चित्त की सिकुड़न। अधिकांश व्यक्तियों की ये धारणा है कि प्रसन्नतादायक परिस्थितियां हों, सुखद अनुकूल और सफलता भरे अवसर हों, तभी प्रसन्न हम रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। पर यह पूरा सत्य नहीं है। यदि चित्त को प्रसन्न रखने का स्वभाव बना लिया जाए तो अनेक समस्याओं से हम मुक्त रह सकते हैं। परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल, विवेकशील व्यक्ति सदा प्रसन्न ही रहते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की स्थिति से वे बहुत ऊपर रहते हैं। सही माने में इंसान वो है जो हर हाल में हर परिस्थिति में खुश रहे, हंसमुख रहे, प्रसन्न रहे। बहुत से लोग बस दुखों के गीत गाते हैं, कोई भी पर्व हो खुशियों का वो दुख ही मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम। मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती है हरदम, जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं। मनोविज्ञान का निष्कर्ष है, जो व्यक्ति प्रसन्नचित्त और नम्र होते हैं उनके हर काम में सफलता मिलती है। जिस तरह सागर की सतह पर उठने वाला हर बुलबुला उछलता हुआ दूर तक चला जाता है, वैसे ही मुस्कान का प्रभाव भी दूर तक चला जाता है। मुस्कुराहट मनागन घर आंगन को प्रसन्नता से भर देती है, मित्रता के संसार को समृद्ध करती है। भौतिक प्रतिस्पर्धाओं के इस युग में जिंदगी के तनावों दबावों को कम करने और आनंदित जीवन जीने का मंत्र है प्रसन्नता।
1: अभी आपने चिंतन सुना यशपाल सिंह राठौड़ से। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं।

0: भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण हम आपको सुनाएंगे दिन में 11:10 से। खेतिया रवास्ते कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा, पशुओं के आहार में नमक का महत्व। खेत कल्याण में दोपहर 12:50 पर किसान भाई जानकारी सुनेंगे, मूंगफली की फसल में समय कार्य। चौपाल में संध्या 7:00 किसान भाई कार्यक्रम सुनेंगे, गीता रो गजरो। लोक भजन का समय रहेगा 7:15। मरुमंगल में 9:10 पर कलाकार होंगे काड़ूराम प्रजापत। ग्रामीण महिलाएं घर आंगन कार्यक्रम सुनेंगी, दोपहर 1:05 पर चर्चा के विषय रहेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, सावन का सांस्कृतिक महत्व, बरसात के मौसम में रसोई की साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा, आधुनिक जीवन शैली में पारंपरिक स्वाद, गीत भी सुनवाए जाएंगे। मानस गान आप सुना करते हैं प्रातः 7:20 पर, भाग संख्या होगी 328। सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:30 पर। भजन आप सुन सकते हैं 8:45 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा 9:30, दिन में 2:30। आज के फनकारीय कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00। सैनिकों के लिए कार्यक्रम हम आपको सुनाएंगे 12:05 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा 8:15 पर। युवा साथी युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे 5:00। चर्चा के विषय रहेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नशा मुक्ति अभियान, ब्रिक्स युवा मंच, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में युवाओं का सहयोग, पारंपरिक हस्तशिल्प पुनरुद्धार कार्यक्रम, विलुप्त होती ऐसी कलाओं को सहजते युवा और आज के इतिहास विषय पर भी जानकारी दी जाएगी। फिल्म गीत भी सुनाए जाएंगे। सराकी का समय रहेगा 6:05। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू का प्रसारण होगा 9:30 पर। सुगम संगीत आप सुन सकते हैं 12:30 पर और 9:15 पर। संसद समीक्षा 8:00 और स्पोर्ट्स कैंट 8:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:40 पर जिले की चिट्ठी हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अद्य राष्ट्रिय हस्ततन्तु दिवसः उत्साहेन आनन्देन च आचरन्त्विति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नागरिकाः प्रार्थिताः। एकस्मिन् चलचित्रीय सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् 75वें वर्षे अगस्ट मासस्य 7वें दिनाङ्के भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य भागरूपेण स्वदेशीय आन्दोलनस्य आरम्भः अभवत्। सर्वक्षेत्राणां जनाश्च एकीभूय ब्रिटिश शासनं विरुध्य ऐतिहासिकं संघर्षं कृतवन्तः। प्रधानमंत्री जनान् स्वहस्तैः वस्त्राणि निर्मातृभ्यः, निर्धनतन्तुवायकुटुम्बेभ्यः, शिल्पिभ्यश्च साहाय्यं कर्तुं प्रोत्साहितवान्।
2: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होता, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय

0: निर्माणम् अनुमोदितम्। मन्त्रिमण्डलस्य गोवर्धनयोजनायाः अनुमोदनविषये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सामाजिकप्रसारमाध्यमे उक्तं यत् स्वच्छ ऊर्जायै ग्रामीणसमृद्ध्यै देशस्य सामूहिकस्वप्नस्य स्वावलम्बनाय च अयं निर्णयः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्तीति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः उक्तवती यत् सर्वकारस्य महत्वाकांक्षा अस्ति यत् आधुनिकप्रगतिः संस्कृतिः परम्परयोः आधारिता भवेदिति। नवदेहल्यां सीडी देशमुख व्याख्यानं 2026 इति कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती श्रीमती सीतारामनः अवोचत् यत् उपभोक्तावादिनः न भूत्वा समृद्धायाः सम्पन्नायाः च भारतीयसभ्यतायाः अनुरूपं सफलं भवितुं भारतस्य नियतिः भवेदिति। भारतम् ओडिशाराज्यस्य चण्डीपुरनगरस्य एकीकृतपरीक्षणक्षेत्रात् मध्यमपरिधियुक्तस्य अग्निचार इति क्षिपण्याः सफलतया परीक्षणम् अकरोत्। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् प्रक्षेपणेन क्षिपण्याः सर्वाः प्रचालनात्मकतान्त्रिकमानदण्डाः प्रमाणिताः अभवन्निति। केन्द्रेण गोवाराज्यस्य विधानसभाक्षेत्रेषु अनुसूचितजनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य पुनः समायोजनस्य अधिनियमः 2025 इत्यस्य कार्यान्वयनम् अधिसूचितम्। येन गोवाराज्ये अनुसूचितजनजातीनां कृते विधानसभास्थानानाम् आरक्षणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। भारतीयराजपत्रे प्रकाशितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं राज्यस्य जनजातीयसमुदायानां दीर्घकालस्य अपेक्षां पूरयन् निर्वाचनक्षेत्रस्य पुनः समायोजनस्य आरक्षणस्य च प्रक्रियां समर्थयन् ह्यः अधिनियमः प्रवृत्तः अभवत्। भारत ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य मध्यप्रदेशे, राजस्थाने, केरलराज्ये, माहेप्रदेशे, ओडिशाराज्ये, तटीयदक्षिणान्तर्गत कर्णाटके च मेघावृष्ट्या प्रचण्डबातेन विद्युत्प्रभावेन च सह प्रचण्डतः अतिप्रचण्डायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अद्य अण्डमान्निकोबारद्वीपेषु, झारखण्डप्रदेशे, लक्षद्वीपे, पश्चिमबङ्गप्रदेशे, मध्यप्रदेशे, तमिलनाडुप्रदेशे, पुदुच्चेरिप्रदेशे, कारैकलप्रदेशे, उत्तराखण्डप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भविष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा अद्य असन नगरे कोरिया मास्टर्स क्रीडायाः महिला सिंगल्स इत्यस्यां प्राग उपांतचक्रीय क्रीडायां स्वस्याः देशवासिन्या रक्षिता रामराज इत्यनया सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पादन खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में दो प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025

0: इसका भी अनावरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और पर्यटन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands.
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
1: National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement launched on the same day in 1905. Ministry of Textiles will organize a national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center today to celebrate 12th National Handloom Day. President Draupadi Murmu will join the event as a chief guest with Union Textiles Minister Giriraj Singh and Minister of State Pavitra Margarita attending the program. The Textiles Ministry said that the function aims to celebrate India's rich handloom heritage and recognize the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Union Cabinet has approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing Media New Delhi Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the scheme will be implemented from 2026-2027.

0: 2027 to 2035 36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnav said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of a four-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. The Centre has notified the implementation of the readjustment of representation of scheduled tribes in Assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of Assembly seats for scheduled tribes in Goa. According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force yesterday, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency, readjustment and reservation. India Meteorological Department has predicted heavy rainfall across Kerala. We have more from a correspondent.
1: The red alert that was in force overnight in Pathanamthitta, Kottayam and Idukki districts in Kerala has been downgraded to orange alert today. Orange alert, indicating the possibility of isolated very heavy rainfall, is also in force in five other districts. The remaining six districts in Kerala under yellow alert, indicating the possibility of isolated heavy rainfall. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: U.S. President Donald Trump has signed two executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. Speaking at the Oval Office, Trump expressed disappointment over the Supreme Court ruling, calling it an unfortunate decision. He added his administration was cracking down very big on what he called abuses of the U.S. immigration system. In badminton, India's Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj have progressed to the women's singles quarterfinals at the Korea Masters in Asan. Tanvi continued her impressive run by defeating a compatriot, Shriyanshi Valishetty, in the pre-quarterfinals. Ashmita beat home favourite Kim Min-chi, while Rakshita defeated Japan's Manami Suizu. In the men's doubles pre-quarterfinals, the Indian duo of Prithivi Krishnamurti Roy and Krishna Prasad Garaga defeated a South Korean pair to secure a place in the quarterfinals. All eyes will now be on today's women's singles and men's doubles quarterfinal matches. India has successfully test-fired the medium-range ballistic missile Agni-4 from the integrated test range at Chandipur in Odisha. The Defence Ministry said the launch validated all operational and technical parameters of the missile. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। खेतियारा वास्ते कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय है पशुओं के आहार में नमक का महत्व।
3: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों पशुओं द्वारा खाया जाने वाला जो को नमक है, जो को नमक आप पशुओं ने ना खा, वो साधारणतः नमक दो तत्व जहाँ सोडियम और क्लोराइड से मिलके बनेड़ो है और आप इन्हें अंग्रेजी की भाषा में माँ सोडियम क्लोराइड भी कह देवा। और मोटा तौर पर आ दोनों तत्वों की पशुओं ने जरूरत हो है और बिया तो शरीर का माँ 0.2% तक सोडियम हो है। और पशुपालक भाइयों शारीरिक माध्यम में अमल क्षार संतुलन बनाए रखने खातर भी नमक की जरूरत पड़े। नमक आंत का माँ अमीनो एसिड और शर्करा का अवशोषण को भी काम करे और इनके अलावा पशुओं ने नमक आप आहार का माध्यम से या फिर दूसरा खाद्य पदार्थ के माध्यम से खुआवा और शरीर में होने वाले जो को चयापचन है जिसकी क्रिया है पहले को नमक पशुओं को आहार खाना में चाव भी उत्पन्न करे क्योंकि नमक से लार बढ़ने की जिसकी सहायता पशुओं ने मिला और लार से आहार का पचने का माँ सहायक हुए। तो ये वास्ते आप मोटा तौर पर केस कहाँ अपना पशुओं जो को आहार है बिंग लिए नमक की बहुत ज़्यादा जरूरत हो है और अपने टेम सर पशुओं ने नमक है वो देना चाहिए क्योंकि कई बार यहाँ जगह पशु डिखर है या फिर कपड़ा लत्ता है या फिर दूसरे जगह कचर वो है वो खाना शुरू कर देवे और अपने ये बात को पता लग जाना चाहिए कि पशुओं ने अब नमक की जरूरत है और ज़्यादा टाइम तक अगर पशुओं ने आहार गमा नमक ना मिले तो पशु की वह कि लकड़ी है या फिर खुद को पेशाब है खाना पीना शुरू कर दे तो अपना जगह वैज्ञानिक लोग अभी आप बात बताओ कि जगह पशुओं ने आप नमक ना खिलावा वह पशुओं की जगह भूख है वह 2-3 सप्ताह बाद गमा कम हो जाए। नमक की कमी से आहार की जगह प्रोटीन और ऊर्जा को जो को प्रयोग है वो ठीक से कोनी हुए नहीं जगह की वजह से पशुओं का जो शारीरिक भार है वो भी कम हो जाए और दूध देने वाला जगह पशु है वहाँ दूध उत्पादन में भी बात करें आप भाई लोगों पशुओं ने आप नमक के तरीका से देश का और कितनी मात्रा में देश का तो जो दूध ना देने वाला जगह पशु है वन आप जी सोडियम की मात्रा है वह 1.67 ग्राम लेके 100 किलोग्राम तक का भार वाला पशु ने देश का ये दूध देने वाला जगह पशु अबा खतरा अपने 101.4 ग्राम जो को नमक है और पशु को

0: भार 1 क्विंटल का लगभग है, तो आप अपने 104 ग्राम जो को नमक है वो अपने देना चाहिए है। और जक्का पशुओं का वजन में बढ़ोतरी होने लगी तो ब्योंगे लिए आपने 1.56 ग्राम यानी कि 150 ग्राम जो को नमक है वो यानी कि यहाँ मांस का आकार रोज अगर आपने 1 किलोग्राम भार बढ़ यानी 150 ग्राम जो को नमक है वो 1 किलोग्राम रोज भार बदना जगह पशु अपन आपने देना चाहिए यानी जखंग भार 150 ले गए 600 किलोग्राम हुआ है तो बन आप 150 ग्राम का लगभग नमक है वो देना चाहिए। अगर गर्भावस्था में पशु है तो बंग लिया आपने 1.5 ग्राम जो को नमक है रोजीना देना है। और जखंग 190 ले गए 270 दिन का गर्भाधान की जो की अवस्था है बा खतरा आपने तो नमक जो को पर्याप्त हुआ है। और जब तक वातावरण का तापमान की बात है तो 25 डिग्री ले गए 30 डिग्री ती है तो बी टाइम अपने 11 ग्राम जो को नमक है वो 100 किलोग्राम भार वाला पशु ने अपने देना है। अगर तापक्रम अपने आसपास को 30 डिग्री के लगभग है तो 44 ग्राम जो को नमक है वो 100 किलोग्राम का भार का पशु ने अपने देना चाहिए है। और इनके अलावा जो अपने कुकड़ पालन भाई लोग कर रखे है तो कुकड़ है मुर्गी पालन है बांगे लिए भी आहार गा में पर्याप्त नमक होने की बहुत ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि पर्याप्त नमक अगर टाइम पर आप ना देवा तो बंग की कमी चुकी हुआ है कि वृद्धि दर रुक जाए और अंडा देने की क्षमता है मुर्गियों गा में कम हो जाए। और इनके अलावा भाई लोगों अगर कुकड़ पालन का माँ आहार का माँ पा नमक की जी मात्रा है वह पर्याप्त रूप से ना रखा जगह की वजह से हो जाए कि कुकड़ है मुर्गा है वे एक दूसरे का पंख नोचना शुरू कर देवे तो इन वास्ते अपने समझाना चाहिए कि अने नमक की जरूरत है। और मोटा तौर पर माना तो एक एक युवा पशु गाय है या फिर भैंस है बिना पा एक दिन का माँ साधारणतः लगभग 13 ग्राम साधारण नमक की जरूरत हो। और वैज्ञानिक आ बात बताओ है कि 500 किलोग्राम प्रति ब्यांत दूध देने वाली जी गाय है या भैंस है बिना लगभग 30 ग्राम नमक है वो रोजाना अपन ने देना चाहिए है। इनके अलावा गोवंश है भैंस है बकरियां है या फिर भेड़ है बंग दाणा का माँ नमक की जी मात्रा बा 1% तक अपा मिला सका। और कुकड़ का दाणा का माँ 0.5% की दर्शू नमक आपा मिला सका। तो इन तरह आप पशुओं का आहार गमा मुर्गी पालन गमा नमक है जो को वो आहार गमा देना चाहिए ताकि अपना जगह पशु है बे बढ़िया गुजारो कर ले और अच्छा दूध उत्पादन भी आपने मिलते रहे। और नमक की वजह से भाई लोगों के एक पशुओं का जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया बने हुए है। तो आप बातों को ध्यान रखना ऐसा प्रणाम मैं चालू राम राम सा राम राम।
1: खेती रावस्ती कार्यक्रम में अभी किसान भाई जानकारी सुन रहे थे पशुओं के आहार में नमक का महत्व विषय पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।
2: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक भजन कलाकार हैं प्रेमचंद साखला।

अभी आप लोक भजन सुन रहे थे। कलाकार थे प्रेमचंद सांखला। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या है 328।

कुंभकर्ण ने युद्धभूमि में भयानक विनाश लीला मचा रखी है, ये देख श्री राम ने सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण को सेना का भार सौंपा और शारंग धनुष संभालकर शत्रु सेना का मान मर्दन करने चले। धनुष की एक टंकार मात्र से शत्रुओं के कानों के पर्दे फट पड़ने की नौबत आ गई। फिर उन्होंने 1,00,000 बाण छोड़े, जिनसे महाबली राक्षस योद्धाओं के हाथ, पैर और सिर कटने लगे। लेकिन मायावी राक्षस फिर संभल कर उठते हैं और युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। श्री राम के वाण आसुरी सेना का संहार करके तरकस में वापस लौट आते हैं। कुंभकर्ण ने

भयानक सिंहनाद किया। विशाल पर्वत उखाड़कर वो वानर सेना पर फेंकने लगा। श्री राम के वाण उसका शरीर वेद कर दूसरी ओर निकल जाते हैं। उसके भीम काय काले शरीर से बहता रक्त ऐसा दिख रहा है जैसे काजल के पर्वत से गेरुए रंग की धाराएं प्रवाहित हो रही हों। कुपित कुंभकर्ण दुगने वेग से वानर भालुओं को मारता काटता एक पर्वत लेकर श्री राम की ओर दौड़ा ही था कि उन्होंने उसकी भुजा ही काट डाली।

अभी आप मानस गान सुन रहे थे, भाग संख्या थी 328। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, प्रकृति और मनुष्य का संबंध बहुत गहरा और पुराना है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। हमें जीने के लिए शुद्ध हवा और पीने के लिए शुद्ध पानी प्रकृति से ही मिलता है। पेड़ पौधे हमें फल अनाज देते हैं, ये सब हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकृति ही मनुष्य का जीवन है। बिना प्रकृति के मनुष्य का जीवन असंभव है। हरे भरे जंगल, पहाड़, प्रकृति का मनोरम दृश्य मनुष्य के मन को लुभाता है, जो शरीर को शांति और स्वास्थ्य प्रदान करता है। प्रकृति मनुष्य के लिए बेहद जरूरी है। जंगलों की कटाई, फैक्ट्रीज का गंदा पानी, कारखानों की जहरीली हवा, वाहनों का धुआं आदि कारणों से मौसम चक्र बिगड़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है। प्रकृति और इंसान एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर प्रकृति बचेगी तभी मनुष्य का भविष्य सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, हमें हमारी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। अगर हम प्रकृति के प्रति प्रेम भाव रखेंगे तो ऐसा कुछ भी करने से बचेंगे जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान हो। दोस्तों, हम प्रकृति से अपनापन रखें और उसकी रक्षा करें, क्योंकि प्रकृति ही मनुष्य का जीवन है।

दोस्तों, संसार में कर्म ही सबसे बड़ा सत्य और आधार है। संपूर्ण सृष्टि क्रम प्रधान है, जहाँ हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही शुभ अशुभ फल प्राप्त होता है। हम जैसा बीज बोते हैं, वैसा ही पेड़ उगेगा और वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। इंसान अपने भाग्य का निर्माण खुद अपने कर्मों के द्वारा ही करता है। संसार में जीवित रहने और आगे बढ़ने के लिए हर प्राणी को कर्म करना ही पड़ता है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी में कर्म की प्रधानता है। कर्म हमारे जीवन में इस वजह से है कि कर्म ही हमारी सफलता की कुंजी है। कर्म करके हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। कर्म से ही हमारी संपत्ति, यश और इज्जत बढ़ती है। कर्म से ही हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारे जीवन की सफलता या असफलता कर्म पर निर्भर है, क्योंकि यह संसार कर्म प्रधान है।

0: ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका अंत निकट है।

दोस्तों, आलस्य करने का अर्थ है अपने जीवन को अंधकार की ओर धकेलना। अगर हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो हमें आलस्य का त्याग करना ही पड़ेगा। आलस्य की वजह से हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते हैं और व्यक्ति असफलता की ओर बढ़ने लगता है। हमारा दिमाग और शरीर काम करना बंद कर देता है, हमारी सेहत भी बिगड़ सकती है। इसलिए जल्दी से जल्दी इस बुरी आदत को हमें छोड़ देना चाहिए। आलस्य जिंदा मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है।

सुप्रभात कार्यक्रम में अब सुनिए, किशोर कुमार को फिल्म का नाम है घर घर की कहानी।

सुप्रभात कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है अनजाना।

0: अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
6: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को

0: प्रतिबिंबित करता है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
2: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर एमडीआर वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनईएफटी के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। यूपीआई लेन देन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
3: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। Ports, industry, maritime expert together on one platform.
1: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
4: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।

0: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की

0: प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेंटर नोटिफाइज एक्ट पेविंग वे फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी इन गोवा असेंबली। लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू लेवी चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. The centre has notified the implementation of the readjustment of the representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. We have more details from a correspondent.
3: According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force from 6th August 2026, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. In a social media post, he said the Act marks a decisive step towards ensuring long-overdue justice and political representation for the scheduled tribe. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
2: Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface UPI and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers, PSPs, and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provision that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate, MDR, on notified electronic payment modes. While real-time payments made through RTGS and NEFT already attract service charges, UPI transactions have so far remained exempt from such fees. Prime Minister

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकज ने गोवा असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल की खातिर रिजर्वेशन की राह हमवार करने के लिए कानून नोटिफाई किया है। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को चार्ज लगाने की इजाजत देने के लिए सरकार को अख्तियार देने वाला बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो भारत की मालामाल और मुतनव्वे हथकरघा विरासत के इजहार और हथकरघा मसनूआत को फरोग देने के लिए आज हथकरघा का कौमी दिन मनाएं। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिनका मकसद पैदायशी शहरियत के हक और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। और बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकज ने रियासत के असेंबली हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी को असरेनो तरतीब देने से मुतालिक गोवा एक्ट 2025 के निफास को नोटिफाई किया है, जिससे गोवा में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए असेंबली सीटों में रिजर्वेशन की राह हमवार हो गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: भारतीय गजट में शाये करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अगस्त 2026 से ये कानून नाफिज होगा, जिससे रियासत की कबायली बिरादरियों की देरीना मांग पूरी होगी और हलके की असर नौ तरतीब और रिजर्वेशन के अमल को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे पूरा किया गया वादा करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ये एक्ट दर्ज फहरिस्त कबायल बिरादरियों के लिए देरी इंसाफ और सियासी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की जानिब एक फैसला कुन कदम है। डॉक्टर सावंत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का इस कानून को हकीकत बनाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे सबका साथ सबका विकास की अक्कासी होती है। पणजी से महेश चौबड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: लोकसभा ने अदायगी और तस्फिया निज़ाम से मुतालिक एक्ट 2007 में तरमीम के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। इस तरमीम के तहत हुकूमत को बैंकों और दीगर अदायगी खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूपीआई और दीगर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के जराए पर फीस या सर्विस चार्ज वसूल करने की इजाज़त देने का अख्तियार दिया गया है। हुकूमत के इस इकदाम का मकसद सार्फीन और छोटे कारोबार पर मामूली सर्विस चार्ज आयद करते हुए बैंकों

0: अदायगी फराहम करने वाले इदारों और डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता इदारों के लिए पायदार आमदनी का एक निज़ाम कायम करना है ताकि डिजिटल अदायगी के निज़ाम को मजबूत किया जा सके। लोकसभा से मंजूर होने वाले इस तरमीमी बिल का मकसद मौजूदा कानूनी शक को ख़त्म करना है जो बैंकों और अदायगी के खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के ज़राए पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR वसूल करने से रोकती है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में वाक़ मरबूत आजमाइशी मरकज से दरमियानी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिज़ाइल Agni-4 का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा है कि इस आजमाइशी परवाज में मिज़ाइल के तमाम कामकाज और तकनीकी पैमाने दुरुस्त साबित हुए। यह आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान ने अंजाम दी है। वजारत ने मजीद कहा है कि यह कामयाब परवाज मुल्क की जामे दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने में एक और अहम संग मील है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब मिशन के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान और DRDO को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दिफा ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्क का दिफा करने के आज़म का एआदा किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर शहरी पर जोर दिया है कि वो आज हथकरघा का कौमी दिन जोशो खरोश और खुशी के साथ मनाए। एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत की जद्दोजहद आज़ादी के एक हिस्से के तौर पर स्वदेशी तहरीक का आगाज किया गया था और जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोगों ने मुत्तहिद होकर बरतानवी राज के खिलाफ तारीखी जद्दोजहद की थी। उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की कि वो उन गरीब बुनकर कुनपों और फनकारों की मदद करें जो अपने हाथों से कपड़ा तैयार करते हैं।
1: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
0: हथकरघा का कौमी दिन 1905 में इसी दिन स्वदेशी तहरीक के आगाज के याद में हर बरस 7 अगस्त को मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत आज हथकरघा का 12वां कौमी दिन मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में कौमी तकरीब का इनेकाद करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इसमें मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी, जबकि टेक्सटाइल्स के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और वजीर ममलुकत पवित्रा मार्गरेटा भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। टेक्सटाइल की वजारत ने कहा है कि इस तकरीब का मकसद भारत की मालामाल हथकरघा विरासत का जश्न मनाना है और मुल्क की सकाफती और इक्तसादी तरक्की में हथकरघा बुनकर बिरादरी के तआवुन को तस्लीम करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तकरीबात की एक अहम खसूसियत साल 2025 के लिए संत कबीर हैंडलूम अवार्ड की पेशकश होगी। भारत की हैंडलूम रिवायत के तहफ्फुज में उनकी कारकर्दगी, जिद्दत, तराजी और ताउन के एतराफ में बुनकरों को कुल 22 अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड शामिल हैं। इस मौके पर मुल्क की मालामाल और मुतनवे हैंडलूम बुनाई की रिवायात का जश्न मनाने के लिए 4 यादगारी डाक टिकट जारी किए जाएंगे। तकरीब के दौरान 2 मतबूआत अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हैंडलूम अवार्ड्स बुक 2025 का भी इजरा अमल में आएगा। अवार्ड याफ्ता हैंडलूम मसनूआत के अलावा शायकीन को रिवायती कनी बुनाई और वॉल हैंकिंग बुनाई के लाइव मुजाहरे देखने का भी मौका मिलेगा, जिससे भारत की हैंडलूम रिवायात के तनवो और बेहतरीन कारीगरी की एक झलक देखने को मिलेगी। 1905 में इसी दिन शुरू की गई स्वदेशी तहरीक की याद में हर साल 7 अगस्त को कौमी हैंडलूम डे मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत के मुताबिक 2015 में अपने आगाज के बाद से ये दिन मुल्क के हैंडलूम बुनकरों के फन, महारत और लगन का जश्न मनाने का एक खास मौका फराहम करता है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने मामले को हल करने की खातिर रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। JPSC और JSSC भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों में एहतजाज अहम मरहले में दाखिल हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: रांची में JPSC और JSSC भर्ती इम्तिहानात में मुबीना बेजब्तगियों के खिलाफ एहतजाज का आज 14वां दिन है, जबकि 6 तलबा अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। कल शाम उम्मीदवारों ने रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एक फ्लैशलाइट एहतजाज

0: आज ही मार्च किया। बाद में रांची सदर के एसडीएम रजत कुमार और एडीएम धनंजय कुमार ने एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात की। नामा निगारों से बात करते हुए एसडीएम रजत कुमार ने कहा कि इंतजामिया अपने नौजवानों से बात करने आई है ताकि मुस्तकबिल की उनकी तैयारियों में मदद पर बातचीत हो सके। तलबा लीडरों ने कहा, कल शाम तक रियासती हुकूमत की जानिब से बातचीत के लिए बाजाब्ता तौर पर मधु नहीं किया गया था, ताहम वजीर आला हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद की बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। तलबा ने एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
1: भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम और माहे, ओडिशा और जनूबी अंदरूनी कर्नाटक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज शुमाल मशरक के हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार जजायर, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। इस साल आसाम में सैलाब के सबब मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 97 हो गई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 15 अजला में 1,68,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर हैं। 480 से ज्यादा गांव सैलाब से मुतासिर हैं, जबकि हजारों अफराद इमदादी कैंपों में रह रहे हैं और इमदाद तकसीम करने वाले मराकज से मदद हासिल कर रहे हैं। सैलाब के बाद कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने सेहत की देखभाल से मुतालिक कैंप लगाने में तेजी पैदा कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो एग्जीक्यूटिव अहकाम पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को महदूद करना और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे एक अफसोसनाक फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया अमरीका के इमिग्रेशन निज़ाम की मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पहले एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में ऐसे गैर मुल्की शहरियों के बच्चों की मुख्तलिफ अकसाम की निशानदेही की गई है जो सुप्रीम कोर्ट की तस्लीमशुदा इस्तिस्नाई सूरतों के तहत पैदाइश की बुनियाद पर अमरीका की शहरियत के अहल नहीं होंगे। दूसरे एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में महकमा खारजा और दाखिली सलामती के महकमे को हिदायत दी गई है कि वो बर्थ टूरिज्म का खात्मा करे। बर्थ टूरिज्म का मतलब वो अमल है जिसमें गैर मुल्की शहरी अपने बच्चों को अमरीकी शहरियत दिलवाने के मकसद से अमरीका का सफर करते हैं। मगरबी बंगाल सरकार पहली मरतबा मरकजी हुकूमत की हर घर तिरंगा मुहिम में बाजाब्ता तौर पर शिरकत करने के लिए तैयार है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल यौम आज़ादी की तकरीबात से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान किया, जिनमें रियासत भर में 70,00,000 कौमी परचम तकसीम करने का मंसूबा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर घर तिरंगा मुहिम में मुल्क मुकद्दम और हुब्बुल वतनी के नज़रिए को बुनियाद बनाकर शामिल हो रही है। भारत और सिंगापुर ने जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी के रोडमैप के तहत तय किए गए 8 शोबों में दो तरफा तआवुन की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत और सिंगापुर की वजारत खारजा सतह की मुशावरत का 19वां दौर कल नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन और सिंगापुर की वजारत खारजा में पॉलिसी के मुस्तकिल सेक्रेटरी लूक गोह ने की। तरफैन ने इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर तबादले ख्याल किया और इस बात का इरादा किया कि मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए आसियान समेत बैन अल-अक़वामी और इलाकाई फोरम्स में करीबी तआवुन और बाहमी राब्ता निहायत अहम है। बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला उनकी हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी हमवतन खिलाड़ी श्रेयांशी वलीशेट्टी को हराया था, जबकि रक्षिता जापान की मनामी सुइजू को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। इस दौरान अश्मिता चालिहा एक दूसरे खवातीन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जापान की आला दर्जे की खिलाड़ी हिना अकेची का सामना करेंगी। खवातीन एशिया कप 2026 के सबसे अहम मुकाबले में 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 28 अगस्त से दुबई में होने वाले खवातीन टी20 एशिया कप 2026 की तारीखों का ऐलान किया है। 28 अगस्त को पहला मैच थाईलैंड और हांगकांग के दरमियान होगा, जबकि फाइनल मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया अर्जुमन। قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے

हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक समाचारों को हम अपने जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। जयपुर में आयोजित ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के गहन सत्यापन का काम शुरू हुआ और राज्य में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। आज बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा और टोंक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। देश आज 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पारंपरिक बुनकरों के कौशल और देश की समृद्ध हथकरघा विरासत का सम्मान किया जा रहा है। आज ही के दिन 1905 में देश के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। इस अवसर पर आज वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में बाड़मेर जिले के सेड़वा के बुनकर बरीगा राम को सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमजन से बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कलाकारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: जयपुर में भी बुनकर सेवा केंद्र की ओर से राज्य के हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई है। जवाहर कला केंद्र में 9 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। आयोजन का उद्देश्य हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना और बुनकरों को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर करौली जिले की खादी और हथकरघा परंपरा को भी याद किया जा रहा है। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि इस ने स्वतंत्रता आंदोलन से ग्रामीण आजीविका तक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1928 में करौली के स्वतंत्रता सेनानी चिरंजीलाल शर्मा ने महात्मा गांधी को स्थानीय हथकरघे से निर्मित खादी वस्त्र भेंट किए थे, जिसकी गांधी जी ने सराहना की थी। जिले में दशकों से बुनकर परिवार चरखे और हथकरघे के माध्यम से आजीविका चला रहे हैं, लेकिन मशीनीकरण, आधुनिक तकनीक और बदलते बाजार के कारण यह पारंपरिक उद्योग अब सीमित होता जा रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी उत्पादों के अधिकाधिक उपयोग का संदेश दिया जा रहा है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज जयपुर में होगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इससे पहले कल ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक जयपुर में आयोजित हुई। बैठक के दौरान भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का भी प्रस्ताव रखा। बैठक में ब्रिक्स देशों के उद्योग मंत्रियों ने एमएसएमई, फोटोवोल्टिक उद्योग, स्टार्टअप और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का उद्देश्य व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना और सदस्य देशों के बीच विश्वास मजबूत करना है। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। इस संशोधन के बाद सरकार को यूपीआई और अन्य अधिसूचित डिजिटल भुगतान माध्यमों पर आवश्यकतानुसार शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए टिकाऊ राजस्व व्यवस्था तैयार करना और बैंकों तथा भुगतान सेवा प्रदाताओं को मजबूत करना है। संशोधन के तहत यूपीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर नहीं लेने संबंधी मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के गहन सत्यापन का अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत सभी जिलों में मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित बनाने के लिए नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन का काम जारी है। जयपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जिससे चुनाव के दौरान मतदाताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो और निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष तथा सुचारू रूप से संपन्न हो सके। जैसलमेर जिले में भी चुनाव स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कल एक बैठक ली जिसमें निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी प्रकोष्ठों की कार्य प्रगति, जिम्मेदारियों, संसाधनों की उपलब्धता, विभागीय समन्वय तथा आगामी कार्य योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह आज जयपुर के राधा गोविंद राजकीय महाविद्यालय में युवा मतदाताओं से संवाद करेंगे। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों के मद्देनजर आयोजित इस कार्यक्रम में वे लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी, मतदाता जागरूकता और मतदान के महत्व पर विचार साझा करेंगे। ये राज्य का पहला अवसर होगा जब राज्य निर्वाचन आयुक्त किसी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी में नशा मुक्त वागड़, स्वस्थ युवा, सशक्त जनजाति और विकसित भारत पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले राज्यपाल ने कल डूंगरपुर जिले के आदिवासी गांव देवलखास में विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। कई स्थानों पर कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी है। सवाईमाधोपुर में सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही है। राजधानी जयपुर में भी कुछ इलाकों में रिमझिम बरसात हुई। भरतपुर के नदबई, वैर, रूपवास, रुदावल और उज्जैन में बरसात से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। उधर बंद बारेठा के कैचमेंट एरिया में बरसात से जल स्तर बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जल स्तर बढ़ने पर बांध के गेट खोले जा सकते हैं। उधर शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार हो रही बारिश से हनुमानगढ़ की घग्गर नदी में पानी की आवक तेज हो गई है। इससे हनुमानगढ़ के धान उत्पादक किसानों में खुशी की लहर है। वहीं कोटपुतली, बहरोड, नीमराणा, बांसूर और विराटनगर में बरसात से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आज बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा और टोंक जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिणी जिलों और कुछ पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट है। उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के विकास के क्षेत्र में राजस्थान की प्रगति देश भर में उल्लेखनीय बनी हुई है। उन्होंने कल जयपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की, साथ ही बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर भी जानकारी ली। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के पोषण तथा संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। जयपुर में आयोजित ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क और ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड के गठन का

0: प्रस्ताव रखा। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के तहत मतदाता सूचियों के गहन सत्यापन का काम शुरू हुआ और राज्य में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। आज 12 बूंदी, झालावाड़, कोटा और टोंक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं कालूराम प्रजापत।

0: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयान फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: मुरमंगल में आप सुन रहे हैं कालूराम प्रजापत को।

मुरमंगल कार्यक्रम का प्रसारण कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं कालूराम प्रजापत को।

मरुमंगल कार्यक्रम के आखिर में सुनिए ये गीत कालूराम प्रजापत की आवाज़ में।

कालूराम प्रजापत के गाए इसी भजन के साथ मरुमंगल कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ युगल गीत। आइए सबसे पहले सुनते हैं राजकुमार फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अब सुनिए एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये गीत। फिल्म का नाम है बेटी बेटे।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में सुनिए लैला मजनू फिल्म का गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आज गुलशन बावरा की पुण्यतिथि है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गीत लिखे। हमारे आज के फनकार गुलशन बावरा हैं। गुलशन बावरा का जन्म शेखपुरा पाकिस्तान में 12 अप्रैल 1937 को हुआ था। भारत विभाजन में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। इसके बाद इनकी बड़ी बहन और जीजा ने इनका पालन पोषण किया। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया। कॉलेज के दिनों में ही ये कविताएं लिखने लगे थे।

गुलशन बाबरा हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार और अभिनेता थे। उनका असली नाम गुलशन कुमार मेहता था। फिल्म वितरक शांति पटेल ने उनके अनोखे अंदाज को देखकर उन्हें बाबरा उपनाम दिया, जिसके बाद वे गुलशन बाबरा कहलाए।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, गुलशन बाबरा को फिल्मों का शौक था और वो किसी तरह बम्बई आना चाहते थे। उन्होंने रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई किया, उन्हें मुंबई में क्लर्क की नौकरी मिल गई। कल्याण वीजी शाह के नाम से पहले अकेले ही संगीत देते थे। उन्होंने गुलशन बावरा को पहला ब्रेक दिया फिल्म चंद्रसेना में। जब कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी बनी तो गुलशन बावरा को मिला अपने कैरियर का पहला हिट गाना। ये गाना था फिल्म सट्टा बाजार से। आइए सुनें।

दोस्तों, अगर आपने अमिताभ बच्चन और प्राण की दमदार अदाकारी वाली फिल्म जंजीर देखी है, उस फिल्म का गाना दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए आपको ज़रूर याद होगा। मशहूर गीतकार गुलशन बावरा द्वारा लिखा यह गीत उन्हीं पर फिल्माया गया है।

दोस्तों, अपने 42 साल के लंबे करियर में गुलशन बावरा ने लगभग 240 गाने लिखे। गुलशन बावरा ने यह बताया कि मात्रा और गुणवत्ता का फर्क क्या होता है। अपने समय के बेहतरीन संगीतकारों कल्याण जी, आनंद जी, शंकर जयकिशन और आर डी बर्मन के लिए उन्होंने गीत लिखे।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम है आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं गीतकार गुलशन बावरा।

दोस्तों, यूँ तो राजेश खन्ना आनंद बख्शी के लिखे गीतों को पसंद करते थे, लेकिन फिल्म अगर तुम न होते ये गाना राजेश खन्ना पर फिल्माया गया कालजयी गानों में से एक है। जितने भी गाने गुलशन बाबरा ने लिखे उनमें से आधे से ज़्यादा आर डी बर्मन के लिए लिखे। संगीत इस गीत में भी आर डी बर्मन का है।

मनोज कुमार ने फिल्म उपकार बनाई। इस सुपरहिट फिल्म में गुलशन बावरा का लिखा गीत आज भी राष्ट्रीय पर्वों पर खूब सुना जाता है। इस गाने के लिए गुलशन बावरा को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आइए सुनते हैं ये एक देशभक्ति गीत।

दोस्तों, फिल्म विश्वास का ये गीत, जिसे मुकेश ने अपनी शानदार आवाज़ में गाया, ये गीत जितेंद्र और अर्पणा सेन पर फिल्माया गया है। इस गीत में भी गुलशन बावरा ने बहुत ही सुंदर रचना की और इनका साथ दिया है संगीत में कल्याण जी, आनंद जी ने।

जिसे अपनी फिल्मों के गाने लिखने के लिए राजेश खन्ना आनंद बख्शी से गाने लिखवाने के लिए कहा करते थे, उसी तरह अमिताभ बच्चन भी गुलशन बावरा के नाम को आगे कर दिया करते थे। गुलशन बावरा का सत्ते पे सत्ता फिल्म का लिखा यह गीत किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, सपना चक्रवर्ती के साथ मिलकर खुद गुलशन बावरा ने गाया है। फिल्म में सात भाइयों पर फिल्माए गए इस गीत ने अलग ही कमाल किया है।

दोस्तों, 7 अगस्त 2009 को गुलशन बावरा इस संसार से विदा हो गए। उनके लिखे गीत और अभिनय हमेशा हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। आइए कार्यक्रम के आखिर में ये गीत सुने। फिल्म का नाम है झूठा कहीं का। आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोसले की है। आप सुने ये गीत और अपने दोस्त को दे इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार थे गीतकार गुलशन बावरा। आज के फनकार कार्यक्रम पेश किया मनोज शर्मा ने। मीडियम वेव 326.79 मीटर।

अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 MHz पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 11 बज चुके हैं, अब सुने फिल्म संगीत।

दिल तेरा दीवाना आप सुन रहे थे। इस फिल्म का ये बहुत ही प्यार भरा प्यारा सा गाना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। गाना लिखा शैलेंद्र ने और संगीत शंकर जयकिशन का था। और ये है आपके लिए अगली पेशकश। अप्रैल फुल फिल्म का ये गाना सुनिए सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

अप्रैल फूल फिल्म का ये गाना आपने सुना, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत ने गाना लिखा था और संगीत शंकर जयकिशन का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत संपन्न हुआ। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 MHz पर, और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 11:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरमामयी उपस्थिति में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आज का यह समारोह भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस गरिमामय अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देशभर से चयनित उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसका विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसीआर खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार, वेरी गुड।

0: morning to all our dear listeners tuned in. And we extend our heartiest greetings on the 12th National Handloom Day. The Ministry of Textiles, Government of India, is celebrating the 12th National Handloom Day today with the national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre, New Delhi. The function celebrates India's rich handloom heritage and recognises the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will grace the occasion as the chief guest. The function will also be attended by the Union Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, Union Minister of State for Textiles, Shri Pavitra Margarita, Srimati Neelam Shami Rao, Secretary Textiles, and Dr. M. Bina, Development Commissioner, Handlooms. The celebrations will also be attended by Sant Kabir Handloom Awardees and National Handloom Awardees and their family members. Handloom weavers from across the country, members of the Award Selection Committee, eminent personalities associated with the handloom sector, senior government officials, media representatives, and other distinguished guests. A major highlight of the celebrations is the presentation of the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon outstanding handloom weavers for their outstanding craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. The function will also witness the release of 4 commemorative postage stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions. 2 publications will also be unveiled by the Honourable President: Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu aaj राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में देशभर से संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, निर्यातक, डिजाइनर और हथकरघा बुनकर शामिल हो रहे हैं। हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण

0: डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की, तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है, इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, ताम्रपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुराई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल, मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी पेशेवर तकनीकी विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
1: Yes, you are absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement, which launched on the 7th of August 1905, that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest source of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, we celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations, unquote, the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris have enriched many individuals.

0: individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now, will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी और विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देश भर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित है। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्व भर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देश भर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देश भर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं, वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
0: Yes, you are absolutely right. And today, the Honorable President of India will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to one awardee, and National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, Honorable Minister of Textiles, Honorable Minister of State for Textiles and External Affairs, distinguished awardees, representatives of state governments, members of the handloom fraternity, industry leaders, development partners, devio aur sajjano, main is 12ve rashtriya hathkarga divas par माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करती हूं। मैं स्वागत करती हूं देश के सभी बुनकर भाइयों और बहनों का। इट इज अ प्रिविलेज टू जॉइन यू ऑल इन सेलिब्रेटिंग द 12th नेशनल हैंडलूम डे, an occasion that honors the extraordinary contribution of India's weaving community and reaffirms nation's collective commitment to strengthen the spirit of Swadeshi. The handloom sector, a custodian of our civilizational heritage, grameen rozgar ka sadhan, mahilaon ke आगे रखे हुए डेवलपमेंट का सूत्रधार और सस्टेनेबल प्रोडक्शन की धुरी, यह 35 लाख वीवर्स और उससे जुड़े हुए लोगों को सपोर्ट करता है। मंत्रालय अपनी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हैंडलूम डेवलपमेंट की द्विपक्षीय या दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से

0: लाखों बुनकरों
1: कब्स। हेलो हेलो, देख रहे हो कैसे बादल जैसे लाइट एकदम फ्रेश और एक्टिव लग रहा हूं।
2: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
0: 1.5 lakh viewers have been onboarded onto the India Handmade e-marketplace. Handloom Hearts, Cottage, Kunj have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively, and achieve economies of scale. Weave the Future ke tahat mein artificial intelligence enabled design tools, unke dwara banaye gaye traditional motifs ko reimagine karne ki cheshta, और ग्लोबल बाजार के अनुरूप तैयार किए गए डिजाइंस, वाइल्ड डिजिटल कैटलॉगिंग एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर कनेक्टिंग लूम्स इन रिमोट विलेजेस डायरेक्टली टू कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। क्यूआर बेस्ड ऑथेंटिकेशन वुड प्रोवाइड ट्रेसेबिलिटी, एंश्योरिंग दैट द स्टोरी, स्किल एंड हेरिटेज बिहाइंड ईच वीव reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs, and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct, and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress, with technology as an enabler and weavers at the heart of journey. It is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is Rashtriya Hatkarga Divas par, main aap sabhi ko apna sincere appreciation देती हूँ, राज्य सरकारों को भी, implementing agencies को भी, development partners और industry stakeholders को भी, पर सबसे ज्यादा उन बुनकर बहनों और भाइयों को जिनके बुने हुए ताने बानों से हमारा जीवन रंगीन, जीवंत और एक memory के साथ जुड़ा रहता है। I once again welcome the Honorable President, Madam, and everybody on this occasion of the 12th Handloom Day. Thank you. Jai Hind.
3: Thank you, ma'am, for this warm welcome address. अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें। I'll request the Honorable Minister, श्री गिरिराज सिंह, to kindly felicitate the Honorable President.
2: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया।
3: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और अब हम बढ़ते हैं आज के समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और

0: कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें।
1: और अब 12वें राष्ट्रीय
0: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ।
1: माननीय राष्ट्रपति
0: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं, ओडिशा से श्री राम मेहर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी। मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर। हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी। आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी।

0: हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबफ्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारिमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी, आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम, हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक, फॉर 500 काउंट मजलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
2: Yes, you are absolutely right. And the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving. And the handloom product was Bichitpar Khadi Sadi. And to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves. And the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sadi. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award

0: 2025 was conferred upon Srimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category weaving, and her product was natural dyed Muga silk sari. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Sri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Sri Kumaran Balaraman. Sri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari. Sri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jandani Sari. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jandani Sari. Sri Manzoor Ahmed Hajam and Sri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Sri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sari. Sri Abhinav Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sari. Sri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sari. Sri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sari. And Sri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025. And she is conferring the National Handloom Awards 2025.
1: Marketing training se hi agle vijeta hain Tamil Nadu se Messrs. 31 Kovilwadi Hatkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन। विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट। आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई। आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है। इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें।

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India is being presented with this special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Post, Government of India. These are all ₹5 postal stamps, which depict the rich heritage of India's handlooms.

0: आज 12 में हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं। मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहाँ आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूँ। जब मैं 12 में हस्तकरघा दिवस की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
1: एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स फ्रॉम द Rashtrapati Bhavan Cultural Center. The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Awards 2025 to the awardees. And now the Minister for Textiles, Shri Giriraj Singh.
0: Jab 10 saal baad aata to 43 lakh, aur jab uske baad 10 lakh aata to 35 lakh, आखिर क्यों? आज मैं कुछ नौजवान भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को

इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है, एवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे, तो 1,90,000। और कॉटेज में लोग लेकर के जाते लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने विभाग ने हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IIST है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IIST को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। ये मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा, ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अपस्किलिंग करते हैं। अपस्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से सब विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25,000 से 30,000 रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं, 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून छो था, जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे। लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया, 35 लाख आए। लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए बीवर हमारे साथ जुट चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीभर भाई अपने बच्चों को IIST में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करेगा।

इसलिए ये पीड़ा है। आज कई युवक जब IIST से पढ़ करके निपट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीवर यानी बिचौलिया, मास्टर बीवर से बीवर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में EPCHC के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है 50 हैंडलूम 50 हैंडीक्राफ्ट। क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीवर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया

0: क्राफ्ट दोनों को मिला करके हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीभर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी आईआईटी दिल्ली से एमओयू किए हैं, केवल एमओयू नहीं किए हैं, अभी 100 बीभर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीभर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा। एआई टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो एआई टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा, टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिवसागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 पीपीएम पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 पीपीएम पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि टेक्स्ट
1: आपको बता दें 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
0: और जो मेरा लक्ष्य है पच लखिया भाई और बहन बनाना, 10 लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
3: बैठे बैठे, मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजा राज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी बुणाकार डिजाइनर देवियों और सज्जन, सभी को नमस्कार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत

आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षित भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातियों समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के 2 पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आज ही आसी अच्छी नुआ जुगान्तर गांधी कही बोली बराबर, खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा, पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सूता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है, इसीलिए जितने जमीन है, जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहाँ से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, पर कितने साल हो गया है, लेकिन वो 2 पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो है, तो यहीं पे तो शॉप है, हम विदेशों में नज़र क्यों डालें। देवियों और स्वजनों, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हैं। इन सभी ने ही आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं संवारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है। बुनाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार

0: पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों को किया है। इनके उस उत्साह और कौशल की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। हाथकरघा का हमारी स्वतंत्रता संग्राम के गहरा जुड़ाव है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए इस आंदोलन का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से देश।
1: आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के जो सांस्कृतिक सभागार है, इसमें माननीय राष्ट्रपति पुरस्कार वितरण के बाद संबोधित कर रही हैं।
0: मनाने जा रहे आ रही है। अब ये एक औपचारिक वार्षिक आयोजन भरी नहीं रहा, ये उत्सव है। हमारे देश की सांस्कृतिक एकता की इंद्रधनुष विविधता है। ये अवसर है सरकार और बुनकर समाज के उन साझे प्रयासों का याद करने हैं जो भारत के हथकरघा सेक्टर को प्रीमियम क्वालिटी की छवि दे रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हथकरघा क्षेत्र में के बहुआयामी विकास के लिए सरकार ने विभिन्न हितधारकों के सक्रिय योगदान से अनेक योजनाओं और अभियान पिछले एक दशक से चली आ रही है। इसके सुपरिचालन आप सामने आने लगा है। मुझे ये भी बताया गया है कि हाल ही में भारतीय हथकरघा उत्पादों के एक विशिष्ट कलेक्शन को विश्व सूत्र वेबर्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड के रूप में वैश्विक ऑडियंस के सामने एक नए ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे भारतीय हैंडलूम को डिजाइन की एक नई विधा मिली है। देवी और सजनों, हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनाकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं, जो माननीय मंत्री में ने हम लोगों के सामने उल्लेख किया। भारतीय हथकरघा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय छवि निखर रही है, उसे और तेजी देते हुए इसे वेरीफाइड कल्चरल इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार प्रयास लगातार बढ़ा रहे हैं। गृहसज्जा और होम टेक्सटाइल क्षेत्रों में हैंडलूम को विशेष आर्थिक बढ़त मिलने की संभावनाएं बन रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान के द्वारा भी भारतीय हथकरघा को स्थानीय सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच पर, जैसे कि ग्लोबलाइज करने के लिए सोचा जा रहा है। इससे हमारे बुनाकारों और शिल्पकारों को आर्थिक समृद्धि के नए अवसर भी मिल रही है और विश्व के समक्ष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा भी बढ़ रहे हैं। टेक्निक और नवाचारी डिजाइन के साथ अनेक प्रतिभाशाली युवा उद्यमी इस क्षेत्र में आने लगे हैं। सरकार और कौशल से इस सेक्टर की बहुआयामी सफलता की लंबे उम्र सुनिश्चित हो सके। युवाओं, एंटरप्रेनर्स, डिजाइनर्स और स्टार्टअप्स पारंपरिक शिल्पों को नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़कर इस क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन कर सकते हैं। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान और वेवर सर्विस सेंटर्स के अंतर्गत कार्यरत डिजाइन रिसर्च सेंटर्स युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि युवाओं को आधुनिक

0: तकनीकों के प्रशिक्षण करने के साथ साथ उनके नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए नई टेक्नोलॉजीज का उचित उपयोग आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
2: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं शोएसियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से हमारा विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:20 हुए हैं। अब सुनिए चंद देश प्यार के गाने।

अभी आपने इन दीवर का लिखा ये गाना सुना, पूरब और पश्चिम फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में, और ये संगीत था कल्याण जी आनंद जी का, और ये है आपके लिए अगली पेशकश।

आशा भोसले की आवाज में। साहिर ने ये खूबसूरत गाना लिखा है और संगीत ओपी नैयर का। सुनते हैं।

अभी आप चंद देश प्यार के गाने सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:30 हुए हैं। अब सुने सुगम संगीत।

सुगम संगीत में हमारे आज के फनकार हैं गायक अनूप जलोटा। यह है कार्यक्रम की अगली गज़ल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के फनकार थे गायक अनूप जलोटा। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:50 हुए हैं। अब सुने कार्यक्रम खेत खलिहान।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनोजिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना खुशहाल हो हर किसान अपना।
0: खेत खलिहान कार्यक्रम में आज की जानकारी का विषय है मूंगफली की फसल में समसामयिक कार्य। जानकारी दे रहे हैं भारत भूषण शर्मा। आइए सुनते हैं।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आपने

गामा, मूंगफली की जी की क्षेत्रफल की दृष्टि में भी आप देखा तो बहुत बिजांत हुआ है। और इन समय के अंदर मूंगफली घनकरे से किसान भाया बिजांत कर ली और कई जी का पछेती करण लग रहा है। तो भूमि उपचार के बाद में इन समय के अंदर विशेष ध्यान देना आप सिंचाई पर, सिंचाई की पद्धति पर भी। फवारा पद्धति अगर आप अपनावा सिंचाई में तो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। इंगमा नोजल की दूरी आप 12 मीटर और लाइन लाइन की दूरी जी की है वह 12 मीटर पर ही रख के 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पानी के दबाव पर सिंचाई आपने करनी चाहिए। फसल में 60 मिलीमीटर प्रति सिंचाई पानी लगाने पर 5 सिंचाई आपने चाहिएगी। तो बुआई के 24 दिन बाद में फिर 48वें दिन, 70वें दिन, 91वें दिन बाद में, 112 दिन बाद में। आज की आपने सिंचाई की पद्धति है अब बढ़िया देखने में आई है। 50 मिलीमीटर प्रति सिंचाई पानी लगाने पर आप 7 सिंचाई कर सका। बिंग अंदर आप 25 दिनों, 40 दिनों, 54 दिनों, 68, 82, 95, 108 दिन बाद में आज की सिंचाई है बा सही आपने लाभ देसी। फारा पत्तियों सतही सिंचाई की अपेक्षा लगभग 25% सिंचाई जल की आप बचत भी कर सका और आपने सिंचाई को क्षेत्र भी बढ़ा सका। जितनी पानी की उपलब्धता है बिंग हिसाब से पानी को क्षेत्र जी को है वो आप बढ़ा सका। मूंगफली की खड़ी फसल में 3-4 सिंचाई आप कर सका। पहली सिंचाई बुआई के 25-30 दिन बाद में और दूसरी सिंचाई अगस्त के पहले पखवाड़े में भी आप कर सका। फूल आने पर, सुइयाँ बढ़ने पर, फली बढ़ने पर इस समय भी भूमि में नमी रखनी थोड़ी आवश्यक हुआ। बात करें आप कीट प्रबंधन की, पौध संरक्षण की, तो खड़ी फसल में जो दीमक गो आपन प्रकोप दिखाई देवे, सफ़ेद लट गो आप अगर नियंत्रण करना है तो आप क्लोरोपायरीफास 20 ताकत 600 मिलीलीटर प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के सागे प्रयोग कर सका। जे अपन जरूरत पड़े तो आप दोबारा भी इन्हें दोहरा सका। मोयला या चैम्पा गोजे प्रकोप अपन दिखाई देवे तो आप 250 मिलीलीटर मिथाइल डेमोटोन या डाइमिथेट या फिर 300 मिलीलीटर मेलाथियन प्रति बीघा की दर से छिड़काव करा। और इन छिड़काव ने अपन दोहरा भी सका जरूरत के हिसाब से। एक रोग आवाइंग में ब्रूथी जैके ना आप माइट भी कहा पिछले कई सालों जिकी फसल बोई बंग में माइट को प्रकोप जी को है कठी कठी देखने मिलो। ज़्यादा प्रकोप की दशा में आप गंधक को चूर्ण 4 किलो प्रति बीघा की दर से बुरखाव कर सका। एक रोग आवाइंग में टिक्का बीमारी, टिक्का बीमारी को प्रकोप जब अपन दिखाई देवे तो आप कार्बन डेजिम 50% WP गो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या मैनकोजेब 2 लीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के प्रति बीघा की दर से छिड़काव कर दें। इनके अलावा हेक्जा को नोजोल 50-5 ताकत बोई 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से पहलो छिड़काव जी को है बीमारी की प्रारंभिक लक्षण आपन दिखाई देवे जद करा आप और दूसरो छिड़काव आप 15 दिन के अंतराल पर दोबारा दोहरा सका। खड़ी फसल में जे संधि विगलन रोग दिखाई देवे अपन जका ना पा कोलर रोट भी का, खड़ी फसल में संधि विगलन रोग की रोकथाम वास्ते आप प्रोपिकोनाजोल 25 ताकत या हेक्जोकोनाजोल 5 ताकत 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से माटिक निक्षेप या सिंचाई पानी के सागे 200 मिलीलीटर प्रति बीघे की दर से दे सका। इसु खड़ी फसल में जिको संधि विगलन रोग हुए भी शू आप बचाव कर सका। बिना अपनी देसी भाषा में आप कोलर रोट भी कह दें। जैव उत्पादन शू आप संधि विगलन रोग को इलाज कर सका, टिक्का बीमारी पर भी नियंत्रण कर सका। इन वास्ते आप ट्राइकोडर्मा विरिडी 10 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज उपचार कर सका। वो समय बिया तो निकल गयो लेकिन फिर भी आगे वास्ते आप ध्यान में रखा कि बीज को उपचार आप अगर जैव उत्पादों करना है भाई आप जो रसायन नहीं करना चाहवा तो आप इं कर

0: का, सागे 4 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडिगो, 250 किलो गोबर गए खाद के माँ उपयोग हूँ, 15 दिन पहला भिगोगे छाया में रख दिया, बुआई के समय प्रति हेक्टर की दर छू माटी में मिलावा और 5% इंग में नीम की जी की निम्बोली है बिंगो गोल को पहलो छिड़काव 45 दिन पर और दूसरो छिड़काव आप 60 दिन पर करा तो इन रोग पर आप प्रभावी नियंत्रण पा सका और वो आपने लाभ भी देगो, क्योंकि जैव उत्पाद जब आप अपनावा किसान भाइयों तो कठे न कठे आप स्वास्थ्य जी की क्रांति चालन लाग रही है बिंगो सहयोग कर सका बिना आगे ला सका और वो आपने सस्तों भी बढ़े। रसायन आज के दिन में अपन देखा कि जिसका रासायनिक उपचार अपन करा वह दिनों दिन महंगा भी होने लग रहा है और वो कठे न कठे प्रकृति ने भी खराब करे पर्यावरण ने खराब करे और जैव उत्पाद अपने कन सुलभ भी है तो आप इनको इस्तेमाल करके और अपनी फसल के अंदर कल रोट को टिक्का बीमारी को नियंत्रण कर सका। टिक्का बीमारी को समन्वित जे प्रबंधन करनो आप कलर रोट को समन्वित प्रबंधन करनो है तो रोकथाम वास्ते आप टेबुकोनाजोल 2 DS 1.5 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज उपचार करा और बुआई के 15 दिन पहला 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति बीघे की दर से 12-15 किलो सडेडी गोबर की खाद में मिला के छाया में रखा और बुआई के समय भूमि में मिला दिया। इंगे सागे ही ट्राइकोडर्मा विरिडी की आई मात्रा 40 दिन की फसल की अवस्था में माटी में मिला सका। जगह किसान भाइया पहले ही जैव उत्पाद को उपयोग कर रखे है वह ई उपचार ने खड़ी फसल में भी कर सके। इंगे सागे ही टेबुकोनाजोल 25% 1 मिलीलीटर प्रति लीटर गिदर छू पहली परनीय जी को छिड़काव हुए बीमारी के प्रारंभिक लक्षण जब आप दिखाई देवे तो आप कर सका और दूसरो छिड़काव आप 15 दिन के अंतराल पर दोहरा सका। यूं टीका बीमारी को नियंत्रण आप कर सकांगा। जड़गलन की बात करें तो इन रोग के नियंत्रण वास्ते आप 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति बीघे की दर छू 60-65 किलो सडेडी गोबर की खाद के सागे मिला के एर बोई उपचार के छिया में रखा एर बुआई के समय भूमि में मिलावा। बीज को 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई कर सका। बिंगे बाद में पकाओ को जब समय आवे तो मूंगफली पकने को समय लगभग अक्टूबर के अंत या नवंबर के बीच तई आ जाए तो बी समय आपने विशेष तौर से ध्यान रखे और मूंगफली निकालनी है छोटी छोटी बातों को ध्यान रखे बढ़िया उत्पादन ले सका आप। अब हम चालू राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय था मूंगफली की फसल में समसामयिक कार्य। जानकारी दे रहे थे भारत भूषण शर्मा। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1 बजने वाला है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर से समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। देश आज 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पारंपरिक बुनकरों के कौशल और देश की समृद्ध हथकरघा विरासत का सम्मान किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें बाड़मेर जिले के सेड़वा के बुनकर बरीगा राम भी शामिल हैं। इधर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बुनकर सेवा केंद्र की ओर से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ इसमें शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने बुनकरों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हाथ से बुने हुए वस्त्रों की मांग का दौर वापस आने वाला है। इस उद्योग से हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने युवाओं को भी इस परंपरागत उद्योग से जुड़ने का आह्वान किया। जयपुर में आज ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आयोजित होगी। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक सहयोग, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और एमएसएमई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री

पीयूष गोयल करेंगे इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे बैठक से पहले ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर के सिटी पैलेस और हवा महल का सांस्कृतिक भ्रमण किया पर्यटन विभाग ने पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत किया केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 6 वर्षों में राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है उन्होंने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी श्री शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और लक्षित प्रचार प्रसार के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दे रही है उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार भी स्वदेश दर्शन पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता तथा तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन जैसी योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में पर्यटन विकास को सहयोग दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षा

0: बीमा गवर्निंग काउंसिल की दूसरी बैठक में कल कही। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीमा एजेंसियों को कवरेज बढ़ाने और समयबद्ध कार्य योजना के साथ काम करना चाहिए। मुख्य सचिव ने अलवर जिले की देशुला ग्राम पंचायत के शत प्रतिशत बीमा मॉडल को अन्य ग्राम पंचायतों में भी लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मध्यम से भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर जिले के पहाड़ी में सबसे अधिक 16 सेंटीमीटर बरसात हुई। इसके अलावा जयपुर के शाहपुरा में 9, सीकर के नीमका थाना और भरतपुर के नगर में 8-8 सेंटीमीटर पानी बरसा। अलवर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, दौसा और बारा सहित कई जिलों में भी अच्छी बरसात हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। अच्छी वर्षा का असर अब बांधों पर भी दिखाई देने लगा है। शिवालिक की पहाड़ियों में बारिश के कारण घग्गर नदी में पानी की आवक बढ़ी है। हनुमानगढ़ में गुल्ला चिक्का हेड पर आज करीब 21,000 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया। इससे धान उत्पादक किसानों में सिंचाई को लेकर बढ़ी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 और 35 सेकंड हुए हैं। अब सुने कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम पेश कर रही हैं किरण शर्मा। आइए सुनते हैं।

कै सावन उमड़ी बादली, कै सावन उमड़ी बादली, बरस रही घनघोर, कोयल कजरी गा रही, नाच रया वन मोर। रिमझिम पड़ी फुहार स्यूं, हुई सुनहरी भोर, खुशियांगी बरसात में हड़दर करता शोर। तीज त्योहार बादलड़ी, सावन गी बरसात, मेघ चमकती बीजली, हरित अमावस रात, काली घटा गगन चढ़ी, गरज गरज कर घोर, सतरंगी सा लहरिया, इंद्रधनुष गा छोर। मेघ मल्लिका रूप सी सजती सो सो बार, हरी चुनरिया ओढ़ कर धरा करे श्रृंगार। सावन गो पावन महीनो, रिमझिम बरस तो मे, धरती गी हरियाली अर हिवड़े में उमंग भरती फुआरा। ओ सब रल मिल गए, जीवन ने नई उमंग और ताजगी से भर देवे। राम राम बहनों, कार्यक्रम सुनने वाली मेरी सगली बहना ने थारी बाई केणांगा हिवड़े शू मोकड़ा मोकड़ा राम राम। आज फिर मैं थारो ए थारे आप गए प्रोग्राम घर आंगन में थारो स्वागत करूं। तो सावन गो हरियो भरियो महीनो चाल है, मन में उठती जिकी रिम जिम हिलोरा है, बे बतावे के बेणा नहीं मिलेंगे कितनी कुड़ी करे वे, क्योंकि सावन गो महीनो बेणो तीज त्योहारांगे सागर ले रावे, व्रत उपवास और खुशी मनावण का भांत भांत का फूटरा पल। बहनों सावन सिर्फ की है बरसात को ही मिन्नो कोनी, ए शिव प्रकृति को श्रृंगार, प्रेम मेल मिलाप अर खुशहाली को संदेश भी ले गया वे। खेत खलियान हरिया उज्जै, मोर नाचे, कोयल कुकै, अरे देखो किसाना का चेहरा है, बां पर नुई उम्मीदा बे झड़कन लाग जाए। और एक दो

भी है कै सावण री हर बूंद में, कै सावण री हर बूंद में जीवन रो संदेश, जड़ अर जंगल राख जो खुशहाल रे वह देश, खुशहाल रे वह देश।

बस है कला, धागा में बस है संस्कृति, और बनावट में बस है भारत की पहचान। राजस्थान की देखो बहनों धरती पर बंदेज, लहरियो, कोटा डोरिया, बगरू और सांगानेर की छपाई, ये सब दुनिया भर में देखो आपकी अलग पहचान रखे। इन कला के पीछे की है कि कारीगरां की बरसां की मेहनत, धीरज और हुनर है वो छिपेड़ो है। आओ आज ये अवसर पर आपा सब मिलके संकल्प लेवा कि जद भी मौको मिले आपा ने तो हथकरघा से बनेड़ो स्थानीय कपड़ों यापा अपनावा, बुनकर बहन भाइयों का हौसला ने बढ़ावा और वोकल फॉर लोकल की जिकी भावना है नी बिना आपा मजबूत बनावा। बहनों आपना राजस्थान तो देखो रंगा की धरती है, बंदेज, लहरियो, कोटा डोरियो, बगरू और सांगानेर की छपाई, ये सब केवल कपड़ों ही को नहीं अपनी पहचान है। जब आप हथगरका से बनेड़ा ये वस्त्र खरीदा तो केवल एक चीज ही कौन खरीदा, आप एक बुनकर गए घर की खुशियां भी लियावा। आपने राजस्थान में बहनों एक कहावत है कै मेहनत री कमाई माथे रोताज, हथकरगो बहनों ई मेहनत को जीवतो जागतो उदाहरण है। करगो जद भी चल है तो केवल सूत ही कोनी बुने वो परिवार का सपना, संस्कृति री पहचान और अपनायत ने भी बुने। आ कला देखो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, आज जरूरत है कि अपनी धरोहर ने आपा संभाला। जद भी कोई त्यौहार हुए, शादी ब्याह हुए या कोई भी खास अवसर हुए तो एक बार आप देखो जिका हथकरघा से बनेवड़ा कपड़ा है नी वे जरूर अपनावा। वो केवल बेणु खरीदारी को नहीं एक बुनकर के घर में मुस्कान भी पहुँचावण है। हाथ से बनेवड़ा कपड़ा में मेहनत के सागे सागे कितने परिवार ने देखो खुशी जुड़ेड़ी हुए। एक बात सुनी कै एक छोटो सो गाँव हो भी गांव में एक बडेरा मायता बे बुनकर रोज देखो आप गए करगे ने संभालता। तो कणी पूछ लियो कि आज तो देखो बाबा जी मशीना को जमानो है, फिर थे करगो क्यों चलाओ? तो बुनकर ओ वो मुस्कुरायो और बोलियो कै मशीन तो देखो कपड़ो ही बन सके पण हाथां की जिकी ममता है और आत्मा है वो तो देखो करगो ही बुने। आ बात आज भी बीती ही साची लग गए जीती दोए में कै सूत सूत में स्नेह है, कै सूत सूत में स्नेह है रंगा री भरमार, हत कर गो बच राख जो ई संस्कृति रो हार। आज एक बात थार सबसे पूछू बहनों कै जद भी बाजार जाओ तो थे कदी सोचो कै एक हथकरघा की साड़ी, ओढ़नी या दुपट्टो खरीदन चू कोई भी बुनकर है बिंग घर में चूल्हो जगेगो। जे आज आप एक हथकरघा उत्पाद खरीदने को संकल्प लेवा तो वो केवल खरीदारी को नहीं एक परिवार की मेहनत को सम्मान है। तो बहनों आओ आज आप प्रण करा कि जिका स्थानीय अपना बुनकर है बांगा उत्पाद आप अपनावा, राजस्थान की लोक कला ने नई पीढ़ी तक आप पहुँचावा। त्योहारा अर जिका शुभ अवसर है वहाँ पर हथकरघा वस्त्रा ने की है प्राथमिकता देवा, वोकल फॉर लोकल की जिकी भावना है बिना आप मजबूत बनावा। आप सब स्वस्थ रहवा, खुश रहवा और लोक संस्कृति से जुड़ा रहवा और सागे के सागे देखो रेडियो से भी जुड़ा रहवा, क्योंकि रेडियो से ही देखो आपने बातों को पता चल है। तो आओ सुना बापा वो एक चोखो सो गीत।

ज्यादा महत्व हो जाए तो हर कोई ब्याह थे या चावे के बिंग घर वालों है जी को भी नकी है के लहरिए की साड़ी या चुंदड़ी या की बीजियां ओढ़नी है कोई भी शुभ चीज की बाकी है ल्यागी दे और ना तो और बात बिचारी जे सावण में जे हरे रंगी कांच की चूड़ी भी ला देनी तो भी बारात जी हो जाए कि मेरे धड़ी ल्यार दी है नी क्योंकि देखो बिन विचा हुए क्योंकि सुहागन बागन लुगाइया हुए बन ओई हुए कि ई सावण के महीने में बा लहरी उपेर है लहरी उपेर गे सुनो सा सिंगार कर गे और के है कि आप पीव नरी जावे। तो देखो मैडम बरसात को टेम है तो बापा बात करा कि बरसात के टेम में आपा ने के चीज है बस सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि देखो मैडम बरसात के टेम में नमी भी आप गए सागे ले गया आवे जी की बरसात है हरियाली तो ले गया आवे जी की आवे ही है बिचारू मेरे हरियाली फैल जाए है अपन ने हर एक चीज सुनी सुनी लग गए आसमान में काली काली घटा आ जाए वाह बीती फूटरी लग गए कि पूछो ही ना पन के है कहेंगे सागे सागे जिया रसोई की बात करा तो बठे नमी के कारण के है कि जिया कीटाणु है फफूंद है कीड़ा कूड़ा है अंग पण पण को खतरों की है कहीं ज्यादा ही हो जाए है नी और ई कारण की है बरसात के माई आपा ने रसोई की जिकी साफ सफाई है और खाण पीण की जिकी सुरक्षा है भी पर आपा ने की है थोड़ो खास ध्यान देना जरूरी हो जाए। देखो जिया भी आपां रसोई को फर्श है पहला तो देखो चौका ए अपने कच्चा आंगना होता तो नी पोत के बेसावल कर लेती आजकल की गए फर्श है जितनी सुविधा चाल गई नहीं बितु ज्यादा औखाई भी हो की है क्योंकि फर्श पर की है जे टमको ही पानी गिर गयो नहीं तो की है तिसड़न गुडर रेव ही रेव है अरबिंग सागे सागे देखो जे कोई चप्पल ले गए अंदर आ गए बाहर गई तो बीसू की है कि नीरी कादड़ी कादड़ी हो जाए कच्चे में ओ तो बड़े कोनी हो तो भी अपन ओ तो झट कौन रहे तो भी अठे देखो पग मंडिया बार बार अब तो पोचो हाथ में ही रखना पड़े है नी तो के है आप साफ सफाई की बात करा तो पानी जी हम आप खिंडन ना दया पोचो रखना ही पड़ेगो है नी क्योंकि जितू ज्यादा सुखू रहे सी बीते ज्यादा बुकीाणु मुक्त रहेगो और पोचा है नी मन आपा ने के है कि सूना जी एकांत रस्यू दो ही लेना चाहिए और डिटोल स्यू दो गे आप एक जी बन सुखा दवा इं कौन भी रेड़ गेड़ में पड़िया है तो भी पड़िया ही है नी इं सागे सागे जी हाँ अपने डब्बा में दाल है मसाला है और जिकी काम की चीजें है बन आप संभाल तो रहे वहां क्योंकि इन टेम में की है नमी के कारण भी फफूंद लाग सके है नी और गुण वगैरह भी लाग सके जो छोला है मूंग है कोई बम है गुण लागण को भी खतरो रे वे तो अपन टेम टेम पर बन है संभाल तो रहो है और इन अलावा देखो जिया कोई भी चीज है बिना आप ढकगे रखनी है जिया गुड़ है रे आटो है कोई भी मसालो की भी तरह की चीज आप रसोई में रखा नहीं तो डके रखा क्योंकि देखो जीजना और बहुत ही हो जाए इन टेम में है नी और तो और किटकी नु कोकरेज वगैरह कसारियां छिबकलियां मेंढक आजकल तो निरा ही देखने ने मिले तो की है खतरो रे वे का एक दी बीमा अंदर गिर सके और देखो या में जेर भी हुए तो जे मान लो कि गिर गयो तो फिर देखो जान जोखिम आ जाए तो इन वास्ते की है सुरक्षा में जीती आप सावधानी रखा ने भी मैं अपनो सुरक्षित आपनो जीवन रख सका है नी और इन अलावा जी अपने रसोई में आप नातना को इस्तेमाल करानी तो वह नातना ने भी आपने धोतो रहना चाहिए क्योंकि जितना देखो कई दिनों पड़े नातना बंबा सान लाग जाए और आन लाग जाए नी तो भी शू क्या कीटाणु भी अंदर पनपन लाग जाए और आजकल देखो पहला तो रख खुंडो तो रख छू बर्तन मांजती लुगाइया तो देखो कीटाणु मर जाता बर्तना में भी आजकल की है कि आजकल भी साबण आन लाग गए नी देख वो पोचो सो आवे एक या छोटो सो या देखी सिराना टाइप वो के वह भी उसे वो भी की है आपने सफाई को बिंगो भी ध्यान रखना चाहिए आजकल बताओ है कभी पोचे से मैं तो भी आप नहीं भी जिया बाहर न जावा तो बैठेगी बाजी की सीट बैठ वह नहीं कोईगी तो भी उसी ज्यादा भी अम्मा कीटाणु हो सके गंदगी बैक्टीरिया हो सके तो आप पान के उकड़ तो पानी उबाल गए पानी और कई देर बिंग में अंदर वो जाबो सो छोड़ देना है जी चूंकि यह बिंग कीटाणु मर जावे और न्यातना आपने धोता रहना है नी तो बहनों आ छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान रख के आपने रसोई ने साफ रखनी है तो बहनों बातों तो अभी और भी कर सा आओ सुनाओ प्यारो सो गीत।

हिंडो तो गड़ा दे रे, है नी। देखो हिंडा तो जिया देखो खत्म ही हो गया है नी। पहला अपने टेम में क्यों तो बिनो पुराने टेम की बात करा तो कोई सो पेड़ को नहीं हूं तो जिका पर हिंडो नहीं हूं तो हर एक पेड़ पर हिंडो मुंडेड़ो ही हूं तो। और सावण की तीज पर तो देख नालो छोरियां छापरियां बास की बेली हो गए एक जिया जागे जठे मोटो पेड़ हों तो बिंग नीचे हिंडो मांडर फेर लेंती बे हिंडा पिंगा चढ़ाती ऊंची ऊंची, है नी। और सागे गाती बे ईसा सुना फूटरा सावणरा गीत बे भी टेमा। पर आजकल तो देखो कट्ठे पहली बात तो है बे हिंडो मांडन ने कोई जिग्ञा भी तो कौन छोड़ी आपा है। हर जिग्ञा देखो आपा पेड़ां की कटाई कर दी अब हिंडो मांडा क्या पर है। जे जिया बाबू जी कहे जो सिर पर मांडा के वाह बात होगी, है नी। पर फिर भी कई लोग विकल्प ढूंढ लिया क्या पहला भी डुल्ला वाली छाता होती है नी तो बंग सिरिया बाहर कड्डे डाउन तो बस सिरिया पर इंडा मांड लेता। पर आजकल तो भी छाता भी कौन रही डुल्ला वाली, आजकल तो सीधी बेकिसी होया करे प्लेन छाता गलन लाग गई तो बिंग कारण बठे इंडो भी कौन मांड सके। और मोल वाले इंडा की तो देखो वाह बात थोड़ी हुए जिकी पेड़ा पर हिंडेगी बात हो पेड़ा पर हिंडेगी तो अनूठी बात होती न्यारी बात होती। पर आजकल की है कि जिंदगी में बाज दौड़ भी तो घनी होगी है नी कि नहीं हिंडा लेने की फुर्सत भी तो कोनी हुआ है। चलो वह बात छोड़ो आज आप बात करा अपना जिका पारंपरिक जिको भोजन होनी भिंगी बात करा क्योंकि देखो सुबह से रात ताई लेगी काम को जिकी काम काज गई जिकी बाज दौड़ है और टेम की कमी है और जिकी अपनी जीवन शैली है बदल गई है भी कारण के है जल्दी से जिका चीज़ तैयार हो जानी लोग भी चीज़ ने पसंद करने लग गया। पर इन सब के बीच में की है जिकी अपनी पारंपरिक रसोई रो स्वाद होनी वो आज भी अपने दिला में की है कि बी ही बावे जी मान लो कोई बाजरी को कोई रोटी कर लियो रे ज्वार मक्को दाला या कोई भी जिकी अपने स्थानीय जिकी सब्जी बांगो जिको स्वाद हो वो आज भी भोजन में जी मिल जाए नी तो जी बह बा चाटती रहे जमी स्वाद ने। और देखो जी आप बात करा बाजरे की रोटी की दाल बाटी चूरमे की केर सांगरी के साग की गट्टां की सब्जी की कड्डी खीचड़ी छाछ राबड़ी ये ऐसा व्यंजन है जिका बेणो अपने संस्कृति की पहचान रहे है और आज भी है और रेंता रहेगा। पहला की है घर में जिकी अपनी दादी नानी उनती आप गाता से है कि अचार पापड़ बड़ी मंगोड़ी कई चीज़ें हैं वो आप हाथों से तैयार करती। आज भी मेरी नानी तो मैंने याद है कि बहुत सारी चीज़ें जिकी दाल हुए नी बेचण नाला हुआ जिका मोल वाली चोलों वाली दाल हुए और भी मेरी नानी घर इसी स्वाद बनाती कि मैं खाता ही को दापता छोटे तका थे भी इसी कोई चीज़ खाई होली लिख गए जरूर बताई है नी। और हाँ व्यंजना में केवल के हो बेनो स्वाद ही कोनी हो बिंग मन की के है आपके परिवार के सागे बैठ के खाण की खुशी और अपनायत भी बीच जुड़ी होती। आज देखो बहनों जिको आधुनिकता को दूर आ गयो है आपनों जिको पारंपरिक स्वाद है वो नए तरीके से भी आप अपना सकें जिया के देखो बात करा बाजरे का आटे से आप चिल्ला है परौंठा है नी। और जिको अपने जिकी स्थानीय सब्जियां हुए बे आप कम तेल में भी बना सका हैं छार जिकी लस्सी है बिना आपां अपने भोजन में शामिल करा पर ये परंपरा बनी रही है और भोजन में की है इन तरह से विविधता भी आ जावे नी भी कई बात को भोजन हो जाए आप इन तरह जो बनावा तो। और देखो बेनो पारंपरिक भोजन अपनाण मतलब आधुनिक जीवन शैली छोड़नो कोनी बल्कि असली बात तो आ है कि नई सोच के सागे पुराने स्वाद से आप जुड़िया रहा और घरों भोजन है जिको स्थानीय अनाज है और पारंपरिक जिका व्यंजना है बन सम्मान देवा तो अपनी संस्कृति है वह भी जिंदा रह सी और जिकी आन वाली अपनी पीढ़ी है नी वह भी इन स्वाद ने पहचानेंगी। आज जुड़ते आपने अपने टाबरिया ने अपने रसोई रे व्यंजना से परिचित करवावा त्यौहार हुए पारि जिकी पारिवारिक मिलन हुए कोई खास मौका हुए वहाँ पर आप पारंपरिक भोजन बनावा जिनसे कि है कि स्वाद गै सागे सागे अपनी जिकी संस्कृति की खुशबू है नी वह भी घर घर तई पहुँचे कै आधुनिकता की चाल चालो पर जड़ा ने मत भूलो कै आधुनिकता की चाल चालो पर

बनो जी तो करो था छू और बात करूं पर के है स्टूडियो गड़ी ई बात की इजाजत को दे आज को प्रोग्राम थाने किसो को लाग्यो लिख गए बताया जरूर और हाँ अब बारिश को मौसम चल है तो एक पेड़ अपन ने जरूर लगाना है ई बात ने याद रख जो अब भाई किरना ने दियो आज्ञा राम राम।

0: Along line of actual control, both sides agree to maintain peace and tranquility in border areas. President Draupadi Murmu presents National Handloom Awards 2025 at Rashtrapati Bhavan. Heavy rainfall lashes several parts of northern India. In chess, Grandmaster Pragyananda wins maiden St. Louis Rapid and Blitz title in the United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले सघन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक

0: गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
1: और उसके बाद उन्हें बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृतिपोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
2: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
3: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपरा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप

0: हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
2: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
3: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की।

0: भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 2:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत।

सभी दोस्तों को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से दोस्तों, आज मशहूर गायक सुरेश वाडकर का जन्मदिन है। आज के इस प्रोग्राम में उन्हीं के प्यारे प्यारे गाने आपके लिए। चंद अल्फाज हैं कि सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा, सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा, जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यार आएगा। मैं जो सोचूंगा तुम्हें और संवर जाओगे, मैं जो सोचूंगा तुम्हें और संवर जाओगे, फूल से चेहरे पे और निखार आएगा।

दोस्तों, कार्यक्रम के आगाज में आप सुन रहे थे यादों की कसम फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गीत सुरेश वाडकर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का था। और ये है आपके लिए अगली पेशकश, सुनते हैं।

ये बहुत ही सुंदर दो गाना हम आपको सुनवाते हैं संगीत फिल्म से अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। संतोष आनंद के बोल हैं, संगीत आनंद मिलिंद का, सुने।

अभी आपने संगीत फिल्म का ये खूबसूरत दो गाना सुना, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर गायक और संगीतकार सुरेश वाडकर के जन्मदिन पर उन्हीं के गाए खूबसूरत गाने। आपका जन्म हुआ आज ही के दिन 7 अगस्त 1955 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में, और 1976 में आप फिल्मी दुनिया में आए और गाना शुरू किया। 1980 के बाद आपके इतने खूबसूरत गाने आए जिनमें से चंद बहुत ही बेहतरीन गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए।

सा सावन फिल्म का गाना सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। संतोष आनंद का गाना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

आपने प्यासा सावन फिल्म का ये गाना सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में, और ये है कार्यक्रम की अगली पेशकश। निगाहें फिल्म का ये गाना सुनिए सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। आनंद बख्शी का गाना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे निगाहें फिल्म का ये खूबसूरत गाना, और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए पहला पहला प्यार, इस फिल्म का गाना अलका याग्निक और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। ये गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है आनंद मिलिंद का। सुनते हैं।

हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर, मशहूर गायक। इनके जन्मदिन पर इन्हीं के गाए खूबसूरत गाने और दो गाने। और अब इसी आखिरी गाने के साथ नरेश वर्मा को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आपको सुनवा रहे थे मशहूर गायक सुरेश वाडकर के गाने और दो गाने। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त 3 बज चुके हैं। कुछ ही पलों के इंतज़ार के बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम जो एफएम बैंड और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर जारी रहेंगे और मीडियम वेव पर रख रखाव के चलते शाम 5 बजे तक हमारा प्रसारण बंद रहेगा। उर्दू सर्विस का इंतज़ार करें।

मीडियम वेव 1171 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।

को मंजूरी दे दी है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामे के दौरान पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एनडीए के उन अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में बार बार रखना अंदाजी पर तश्वीश का इजहार किया। भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाकों में अमन और सुकून बरकरार रखने से इत्तेफाक किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में हथकरघे से मुतालिक 2025 के कौमी अवार्ड्स अता किए। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर परगनानंदा ने अमरीका में सेंट लुई रैपिड और बुलेट्स का अपना पहला खिताब जीता है। और रक्षिता रामराज और अश्मिता चालहा आसान में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। खबरें तफसील से। पार्लियामेंट में बहुत छोटे छोटे और औसत दर्जे के कारोबार की तरक्की के तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी है, अलबत्ता राज्यसभा ने इसे पीर को मंजूरी दे दी थी। पहली बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद आज ऐवान की कार्रवाई जब दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो एमएसएमई के वजीर जीतन राम मांझी ने बहुत छोटे छोटे और औसत दर्जे के कारोबार की तरक्की से मुतालिक 2006 के कानून में मजीद तरमीम का ये बिल पेश किया। इस बिल का मकसद अदायगियों में ताखीर को ख़त्म करना और मुतनाज़ा हल को सहूलत आमेज बनाना है। बिल में कहा गया है कि सरकारी शोबे के हर मरकजी कारोबार के तहत रियायत के निज़ाम के तहत एमएसएमई की अशिया या खिदमात की खरीदारी के लिए बिल लाजमी तौर पर पेश करे। इस बिल की मंजूरी के बाद प्रिजाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया ने ऐवान की कार्रवाई जारी रखने की कोशिश की और एहतजाज करने वाले अरकान से अपील की कि वो ये कार्रवाई जारी रहने दें। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन के इस रवैये पर तशवीश जाहिर की और कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हमेशा इजलास के दौरान आते हैं और देर रात तक मौजूद रहते हैं। हंगामा जारी रहा। प्रेजाइडिंग अफसर ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। अब ये कार्रवाई पीर को दिन में 11 बजे शुरू होगी। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारत छोड़ो तहरीक के मुजाहिदीन आज़ादी और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। राज्यसभा ने भी नीट के मामले पर तलबा के मुजाहरों के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई समेत दीगर उमूर पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद आज दिन भर के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। दोपहर 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधा कृष्णन ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान वक्त सवाल उठाया। शोरगुल के दौरान रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने रेलवे में कवच और सिग्नल निज़ाम की तनसीब से मुतालिक एक सवाल पेश करने की कोशिश की लेकिन वो अपना जवाब मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि शोरगुल जारी रहा जिस पर चेयरमैन ने दिन भर के लिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी। अब ये कार्रवाई पीर के रोज दिन में 11 बजे शुरू होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रिहायशगाह पर नाश्ते के दौरान एनडीए में शामिल होने वाले नए मेंबरान पार्लियामेंट से मुलाकात की। इनमें एनसीपीआई और शिवसेना के अरकान पार्लियामेंट भी शामिल थे। मीटिंग के बाद पार्लियामेंट आते में नामानिगारों से बात करते हुए शिवसेना की अरकान पार्लियामेंट ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई में बार बार रखना डालने पर तश्वीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म समझते हैं कि बार बार रखना डालने की वजह से ऐवान में नौ मुंतखब और बासलाहियत अरकान पार्लियामेंट को अपने ख्यालात पेश करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एनसीपीआई की मेंबर पार्लियामेंट शताब्दी रॉय ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने एनडीए से वाबस्ता हर एक मेंबर का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि क्या करने की ज़रूरत है और किस तरह अरकान पार्लियामेंट मुल्क की तामीर में मौसी तरीके से अपना ताउन दे सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में टेक्नोलॉजी के इंडियन इंस्टीट्यूट IIT की 57वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म तकरीब के दौरान 3,000 से ज़्यादा ग्रेजुएट तलबा नीज उन 587 PhD स्कॉलर से भी जिन्हें डिग्री अता की जाएंगी खिताब करेंगे। जनाब मोदी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को प्रेजिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल समेत इंस्टीट्यूट के सबसे पुरवकार एजाजात से भी नवाजे।

0: भारत और चीन के दरमियान कल नई दिल्ली में मुनाकिदा वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स WMCC की 36वीं मीटिंग के दौरान हकीकी कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल का जायजा लिया गया और खुलकर बातचीत की गई। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया कि दोनों फरीकों ने सरहद की हदबंदी, सरहदी इंतजाम, निजाम साजी और सरहदी ताउन से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया और इस बात पर जोर दिया गया कि दो तरफा ताल्लुकात के मजमू फरोग के लिए सरहदी इलाकों में अमन व अमान और इस्तेहकाम बरकरार रखना जरूरी है। दोनों फरीकों ने बाकी मानदा मसाइल को हल करने और LAC पर किसी भी गलत फहमी या गलत तखमीने से बचने के लिए WMCC मकामी कमांडर सतह की मीटिंगों और दीगर तयशुदा तरीकों समेत मौजूदा सिफारती और फौजी ज़राए का इस्तेमाल जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज संत कबीर हथकरघा अवार्ड और 2025 के हथकरघे के कौमी अवार्ड्स अता किए। 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स समेत कुल 22 अवार्ड्स हथकरघे के बुनकरों को उनकी कारीगरी इख्तिरा और भारत के हथकरघे की रिवायात को जारी रखने पर दिए गए हैं। आज नई दिल्ली में हैंडलूम के 12वें कौमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हज़ारों साल से हथकरघा भारत की सकाफत और तहजीबी सफ़र का एक लाजमी हिस्सा रहा है। सदर जमहूरिया ने बुनकरों, छोटे कारोबारियों, डिजाइनर्स, तलबा और भारत के हथकरघे के शोबे से वाबस्ता हर एक शख्स को नेक ख्वाहिशात भी पेश की। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने हर एक शहरी से जोर देकर कहा कि वो आज हथकरघे के कौमी दिन का जश्न पूरे जोश व खरोश के साथ मनाएं। शुमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में आज शदीद बारिश हो रही है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज दिल्ली के लिए औसत दर्जे से लेकर शदीद बारिश के सिलसिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इम्कान है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी इस माह की 12 तारीख तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ओडिशा, साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी राजस्थान, केरला, माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक और शुमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज दिन में शदीद बारिश का इम्कान है। सरकर्दा इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम ग्रुप ने पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि वो इस्लामाबाद के नए गैर मुल्की मीडिया फैसिलिटेशन रहनुमा खतूत 2026 वापस ले। ग्रुप ने इन जब्तों को सख्तगीर और जालिमाना करार दिया है और खबरदार किया कि वो पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में फैल रही बेचैनी और अबतरी की कवरेज को सेंसर करेगा। उसने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम ने जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बैन अल-अक़वामी अखबारों की जानिब से पुरअमन मुजाहरीन के साथ झड़पों के दौरान पुलिस की वहशियाना कार्रवाई और मोबाइल और इंटरनेट खदमात मुअत्तल करने की इतराज़ देने के बाद वहाँ इंतखाबी इसलाह की मांग कर रहे मुजाहरों की कवरेज पर पाबंदी लगा दी है। ये नए रहनुमा खतूत कानूनी तौर पर मकबूजा इलाके में बढ़ती बेचैनी के पस मंजर के बाद नाफिज किए गए हैं, जिसमें यह दावा किया गया कि गुज़श्ता कुछ दिनों में 50 से ज्यादा लोग हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमरीका में ग्रैंड चेस टूर्नामेंट लुइस रैपिड और बिलेट्स खिताब जीत लिया है। 20 साल भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखीर सिंदारोव के खिलाफ आखिरी राउंड बराबरी पर खत्म करते हुए चैंपियनशिप जीती। प्रज्ञानंद 5 रोजा मुकाबले में शुरू से ही सबकत बरकरार रखी। इससे कबल जून में प्रज्ञानंद ने ओसलो में नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतकर तारीख रकम की थी। बैडमिंटन में आज आसान में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालक कोरिया मास्टर्स में खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। पार्लियामेंट ने अदायगियों में ताखीर को खत्म करने और मुतनाज़ा हल को सहूलत आमेज बनाने के MSME तरक्की तरमीम बिल को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने NDA के उन अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में बार बार रखना अंदाजी पर तशवीश का इजहार किया। भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन IR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

मुबारक बेगम और साथियों को, सामने आप सुन रहे थे फिल्म थी परवीन, नगमा निगार थी राजा मेहदी अली खान और मौसीकार ए आर कुरैशी। अब सुनिए किशोर कुमार और साथियों को, फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार आर डी बर्मन।

0: विद्यालय आप गए?
1: हाँ जी, मैं उधर भी जाता था क्योंकि उस वक्त ग्वालियर स्टेट था, तो जो माधव संगीत विद्यालय में गाना सीखता है उसको एक समय का भोजन मुफ्त में मिलता था, इस वजह से वहाँ सीखता था। और एक कुंडल गुरु करके थे, वो बाला साहेब बोलते थे, अच्छे गाते थे। और उसके बाद ये हफीज अली खान साहेब, वो भी शाम को अपना कटिया डाल के बस आराम से बैठे हैं, और मैं उधर भी जाता था। उन्होंने भी मुझको पुरिया मारवा सिखाया। उस वक्त का जो कलाकार थे, एक दफा कॉन्फ्रेंस को अगर निकले तो दो दो महीने तक आते ही नहीं थे, और हमारे लिए तो बहुत ही दिक्कत हो गई। तो मैं उधर से फिर खड़गपुर गया, वहाँ केशव मुकुंद लुखे करके एक ये राजा भैया जी के ही शागिर्द थे, उनके पास रहा। लेकिन ये इतना ट्यूशन करते थे, सुबह 8 बजे निकलते और रात को 10 बजे वापस, मुझको सिखाने के लिए
2: वक्त नहीं मिलता था,
1: वक्त ही नहीं मिलता था और शक्ति भी नहीं रहती। मैंने कहा ये कुछ ठीक नहीं है। मैं फिर कलकत्ता गया, पहाड़ी सान्याल के यहाँ।
2: वहाँ पहाड़ी सान्याल के यहाँ आप रहे?
1: हाँ, मैं नौकर था। उनका भी यही हालत, सुबह गए तो शूटिंग के लिए पिक्चर का, तो अभी रात को ही आते थे, आने के बाद बस खाना खा के सो जाते थे। इसमें तालीम की क्या बात है?
2: लेकिन इस आपकी यात्रा में बहुत कष्ट भी उठाने पड़े होंगे आपको।
1: ये तो अभी मैं
2: खाना पीना रहना
1: वैसे ही मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। और वहां से फिर मैं तंग आके दिल्ली गया। आपने सुना होगा नसीरुद्दीन
2: का, सुना है?
1: उनके चाची आया, पिताजी थे, बोले गंडा बांधो हमारा तब गाना सिखाएंगे। अब कहाँ से बांधो गंडा?
2: मेरे के लिए कुछ है नहीं,
1: मेरे जेब में तो कुछ है नहीं। बोले फिर नहीं हो सकता है। वहां से फिर मैं जलंधर गया, वहाँ अंध गायक थे भक्त मंगत राम, वो ध्रुपद सिखाते थे। उन्होंने कहा ठीक है चलो ध्रुपद ही सीखेंगे। साल भर मैं उधर रहा, और वहाँ आपने सुना होगा हरिवल्लभ का
2: बड़ा मेला लगता था वहाँ। हाँ, आज भी लगता है।
1: वो वहाँ गाने के लिए देश के सभी अच्छे अच्छे कलाकार आते थे। और एक दफा विनायक राव जी पटवर्धन आए, कोई भी आए तो हम अपने पीछे तानपुरा छेड़ने के लिए तैयार थे। बोले तुम इधर क्या कर रहे हो? कहा मैं ध्रुपद सीख रहा हूँ। अरे तुम्हारा गाँव गजक ना, दरी कुंदगोल में इतनी बड़ी हस्ती है।
2: हाँ।
1: उनके पास जाओ, फिर जैसे गया था वैसे ही पर वापस। जाने के टाइम में भी टिकट नहीं, पैसा नहीं, आने के टाइम में भी नहीं। ऐसा करते करते घर पहुंच गया। लेकिन एक फायदा हुआ, जलंधर में रहने से हवा पानी अच्छी, और कसरत भी करता था। सुबह 4 बजे उठ के ठंडा पानी से नहा लो, और उसके बाद वहाँ एक कृष्ण ऑयल मिल थी।
2: अच्छा।
1: उसके जो मालिक थे वो हमारे वो भगत मंगत राम जी के मित्र, उन्होंने बोला ठीक है हमारे तरफ से तुम खाना खाते चलो। हलवाई को बोल दिया, उस वक्त क्या 4 आने में खाना मिलता था। और एक बड़ा ग्लास भर के दूध क्रीम डाल के एक दफा खाने से फिर शाम को
2: मलाई के साथ दूध पिया आपने। लेकिन ये जो बाहर जाकर के आपने ये सब साधना की, तो वहाँ पे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ, उससे लंबाई भी बड़ी होगी।
1: हाँ जी, उसी वक्त का लंबाई है अभी।
2: अच्छा, आपने इतनी सारी साधना करके किराने घराने की परंपरा को विकसित किया। अब इस परंपरा को विकसित करने में आप पर अपने गुरुवर का तो असर है ही, लेकिन हम जो आपका यहाँ गाना सुनते आए हैं उस पे हमने महसूस किया है कि किराना घराने की जो स्वरमयता है उसमें आकृतिमयता ला करके उसको एक नया आपने आयाम दिया। तो इसके लिए आपने कुछ कुछ प्रयोग किए गायन में किराना घराने की आत्मा को कायम रखते हुए, तो उसके संबंध में कुछ हम जानना चाहते हैं।
1: देखिए, आज तक जो आपने अगर संगीत का इतिहास देख लिया, जो अच्छे गाने वाले हैं वो सब यही करते थे। अपने को अगर नाम कमाना है
2: जी,
1: अपना भी कुछ चाहिए ना उसमें। ये जब तक नहीं होगा फिर क्या बोलते हैं, गुरु ने जो बताया वही गाता है, वो गुरु से कंपेयर करते हैं। अगर अपना कुछ रहने के बाद उसमें अगर रंजकता लाने के लिए, और जितने उस समय के कलाकार होते हैं, मैंने हमारे समझ में भी नहीं आता कि हमारे गायकी में जो कुछ अच्छा लगता है सब घराने का वो सुंदरता लेके अपनी एक अलग भट्टी तैयार।
2: अब इस किराना घराने में बहुत से गायक एक ताल में ही अपना ख्याल प्रस्तुत करते हैं, आपने उसको त्रिताल का आयाम दिया, ऐसा आप कहते हैं।
1: त्रिताल ये तो अपने अपने मन पसंद की बात है, लय तो वही रहती है।

0: 17 गिनने में इधर उधर होता है, इसमें 12 उसमें 16, 12 में 16 करना आसान है लेकिन 16 में 12 करना मुश्किल है और रंजकता ज्यादा है
1: जी
0: मेरे ख्याल से।
1: अब एक बात और है कि आप आला दर्जे के ख्यालिया हैं, ख्याल को आपने जो एक सुबद्ध, एक चुस्त, एक ठोस रूप दिया है उसका जवाब नहीं है, तो इस ख्याल को इतना सारा सुंदर रूप और इतना चुस्त रूप देने के लिए आपने और लोगों से कुछ कुछ प्रेरणाएं ग्रहण की होंगी, उसके संबंध में कुछ बताइए।
0: अब देखिए, मैं जब गाने लगा तो आमिर खान साहब, बड़े गुलाम अली
1: जी,
0: केसर भाई, इनका सब मैं इतना जल्दी गाना शुरू नहीं किया, पब्लिक में गाने की उम्मीद नहीं थी, सुनने का एक 5-10 साल सुन लिया,
1: हाँ हाँ,
0: और उसके बाद आस्ते आस्ते शुरू किया।
1: नहीं, गुणजनों की संगत आपने बहुत की, आप तो बताते हैं कि तबलियों की भी संगत आपने।
0: हाँ, वो अभी उस वक्त देखी है, किशन महाराज के पिताजी घंटे महाराज, हाँ। किशन महाराज, अनोखे लाल और शाहिरुद्दीन सारंगी वाले,
1: थेरकवा साहब भी थे उसमें,
0: और गोपाल मिश्रा बनारस,
1: हाँ।
0: उसके जैसा गले के लिए संगीत करने वाला मैंने नहीं देखा, उसके बाद सब सारंगी लिया है, अलग आप
1: जी जी
0: सुनने में नहीं आता।
1: नहीं, सवाई गंधर्व में भी आपके साथ उन्होंने बजाई थी,
0: बजाई थी।
1: अब ये केसर भाई जी का और आपका परिचय खास इत्तेफाक से और एक बहुत सुंदर ढंग से हुआ बताते हैं।
0: गौर करने की बात है, पहला जो नेशनल प्रोग्राम हुआ उसमें केसर भाई का पहले टेलीग्राम
1: मिला,
0: आज ये रेडियो के बक्से में आज अच्छा गाना सुना,
1: बड़ी उपलब्धि है,
0: जी
1: कोई संदेह नहीं। तो आमिर खान साहब का भी आप पर असर हुआ, वो किस ढंग से आप हमेशा बताते हैं।
0: जब उनका गाना मुझको पसंद था, जिस दिन से तान लेते हैं या सरगम लेते हैं, ये सब मुझको बहुत पसंद था। उसके बाद हमारे सवाई गंधर्व संगीत उत्सव में भी गाने के लिए बुलाया था,
1: सुना है हमने। आपके गायन में तानपुरे का महत्व बहुत है, तानपुरे की जोड़ी जब तक ठीक नहीं लगती तब तक आपका गाना शुरू ही नहीं होता।
0: हाँ, बराबर है, वो तानपुरे में ये ताशीर है कि अच्छे तानपुरे मिल गए, 5 मिनट तक बजाते रहिए तो एटमॉस्फेयर रेडी
1: पैदा हो जाता है।
0: और ये आजकल की बात छोड़िए, लेकिन मैंने देखा हमारे गुरुजी तानपुरे मिलाते थे तो इतना ध्यान से मिलाते थे कि तानपुरे सुनते ही रहे।
1: फिर ये तान क्रिया आपकी जो है ख्याल में, आपकी प्रस्तुति में
0: जी,
1: वो अपनी एक विशेष सुंदरता रखती है, और एक तान क्रिया जो आपकी है बहुत असर पैदा करती है।
0: पहले तो सब जो कुछ मेरे में अच्छा है बुरा है वो सब गुरु की कृपा है, फिर उसमें गाना जब गाते हैं तो सिर्फ तालीम से नहीं गाना आता है, अपनी भी खुद की नजर चाहिए
1: चाहिए।
0: नजर इसका मतलब गायकी में सब ढंग चाहिए, रंजिता के हिसाब से आपको जितना वैरायटी कर सकते हैं करते जाइए, फिर आपको उसमें गाता गाता विचार आते हैं उसका भी प्रयोग करें, लोगों को अच्छा लगता ही है। गाने का तत्व ही है कि जब तक कलाकार खुद खुश नहीं होता,
1: सच बात,
0: आनंद उसमें नहीं आता तो लोगों को नहीं आएगा।
1: ये जो आपके गायन में भाव तत्व, आर्तता और एक भक्ति भाव हमेशा महसूस होता है, ये आपके पैदाइशी स्वभाव है या भक्ति का असर?
0: ऐसा मैं सुना हूँ, बाल गंधर्व जी हैं, वो मैं तो नाटक नहीं दे सका, मैं बहुत छोटा था और मेरे पास इतने पैसे नहीं,
1: सच।
0: उनका जब वो भजन प्रोग्राम करते थे तो उसमें उनका गायकी के सब चीजें बहुत गौर से सुनता था, लय पर कैसे आते हैं, सम पर कैसे आते हैं, ये शब्द ये कैसे फेंकते हैं, एक विठला है पांडुरंग ऐसा,
1: दो बार
0: तीन तीन बार विठला करके सम पर आते थे, ये जो उनमें तासीर थी।
1: अच्छा पंडित जी, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके गायन में प्रचलित या सिद्ध रागों पर आपका बल अधिक रहता है, और उसके पीछे आपका कुछ विचार तो जरूर होगा, उसके संबंध में कुछ बताइए। चोरी है, मालकंस है, दरबारी है, उस पर आपकी मुहर लग गई है, शुद्ध कल्याण आप ही गाएं।
0: नहीं, वो बात नहीं है, उसमें ये जो पुराने राग है उसमें गायकी आने के लिए ज्यादा रागों का तालीम नहीं चाहिए। सुबह तोड़ी, दोपहर में मुल्तानी, और श्याम कुमार वाया पुरिया, और रात में मालकंस या दरबारी, बस इसमें जिंदगी गुजर जाती है। कलाकार को गाने के टाइम में क्या चाहिए, रंजकता।
1: फिर राग के भाव के मुताबिक आप अपनी आवाज को प्रकट करते हैं, आवाज का लगाव, जैसे कि

0: मिया में आपका अलग अबालक है, दरबारी में अलग है, मिया मलार में अलग है।
1: ये सब अच्छे अच्छे बुजुर्गों को सुनने के बाद ऐसे विचार आते हैं, असल में गुरु कैसे गाते थे। मैं जब सीखने लगा तो सवाई गंधर्व टॉप फॉर में थे, रिकॉर्डिंग के लिए रियाज करो। अब कल महफिल है तो आज से शुरू, 8 दिन पहले क्या गाना है क्या नहीं, ये जो रियाज करते थे वो सुनने को मिला मुझको।
0: गुरुकुल परंपरा का ही भाव है, उनके साथ आप रहे, उनका रियाज आपने सुना।
1: उस वक्त का हमारे गुरु जी का गाना इतना सुना कि एक ही राग अगर 10 बार गाए तो अलग अलग आलाप में तान में ये एक ऐसा फिक्स ऐसा कुछ नहीं, स्वतंत्र विचार करने की शक्ति थी। तो ऐसे बुजुर्ग लोगों का सुना हूँ मैं।
0: लेकिन रियाज के बारे में भी गुरुवर ने आपको कुछ अच्छा अच्छा एक दिखाया, जैसे कि आप बताते हैं कि सवेरे 4 बजे से आपका रियाज शुरू हो जाता था,
1: 1 घंटा 2 घंटा मंदिर सप्तक, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद थोड़ा घर का काम करना, पानी लाना,
0: बहुत दूर फासले से नाना पड़ा,
1: 1 माइल, तब फिर 10-11 बजे फिर शुरू, फिर शाम को। वो डेली नहीं सिखाते थे, ये उसमें तारीफ ये है, आज सिखाए तो 2-4 दिन छुट्टी, हमारे लिए नहीं।
0: तो आप तो रियाज करते ही रहेंगे,
1: बताए हैं वही रिवीजन
0: करना, उसकी दोहराई करते रहना।
1: और गाने का असली काम तो यही है, गायकी जब तक गले में नहीं बैठती तब तक कलाकार नहीं होता।
0: अब ये ठुमरी तो आपने करीम खान साहब का भी असर है और गायकों का भी आप पर कुछ असर है, या ठुमरी के संबंध में आपने कुछ खास विचार किया है?
1: नहीं, विचार करने की क्या है, आपको ताजुब होगा, लखनऊ रेडियो में है, मैं स्टाफ आर्टिस्ट था 1940 में, 35 रुपए मिलते थे और हफ्ते में 2 दिन गाना 15-15 मिनट। लेकिन उस वक्त वहाँ गाने के लिए सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन भाई और बेगम अख्तर, ये सब टॉप फॉर्म है, और बिस्मिल्ला को ये कसरत करने का भी शौक है। मैं और बिस्मिल्ला दोनों मिलके रेडियो के बगीचे में कसरत करते थे। तो वहाँ सुनने के लिए, ठुमरी सुनने के लिए मैं था।
0: पंडित जी, आपको इतनी शोहरत मिली है, मान मान्यता मिली है, लेकिन आप सादगी की साकार मूर्ति हैं। आपकी वेशभूषा, आपका रहन सहन, आपका आहार भी, सब कुछ में सादगी आपने अपनाई है, तो इसके पीछे आपके स्वभाव की एक विशेषता हमें महसूस होती है, क्या ये शुरू से ही आप ऐसे ही हैं?
1: मैं शुरू से ही ऐसे हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी आप जानते हैं बहुत बड़े संस्कृत के विद्वानों हैं और इंग्लिश है संस्कृत, हमारे घर में सब लोग आते, लिटरेरी फिगर जितने सब आते थे। बचपन से मैं देखता था इनका रहन सहन कैसा है, ये देखे देखे हमारे मन में ऐसी कोई बात नहीं आई कि हम गाने के लिए अलग ड्रेस करें, जो कुछ है गला है।
0: गायकों के लिए आहार के संबंध में कुछ परहेज होता है, ये पसंद है वो, उस पे गले पे असर होगा, ये हम नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ये भी आपके लिए नहीं है?
1: नहीं, मैं खाता हूँ, सब खाता हूँ, उसके लिए आपका जनरल हेल्थ जो है वो अच्छी जाए, इसके लिए मैंने कसरत भी किया, तो स्विमिंग योगासन, उसी वजह से आज जिंदा हूँ।
0: इस ताकत का एक और भी एक उदाहरण मिलता है कि आप मोटर ड्राइविंग में आपने रस लिया, लेकिन मोटर ड्राइविंग तो आपने सीखा, मोटर मैकेनिक्स भी सीखा।
1: वो तो इधर गैरेज में जाके बैठता था, ये लोग क्या करते हैं इंजन खोले बगैर तो मालूम नहीं होता।
0: ऐसा गायक तो हमने देखा ना कि खुद मोटर चलाते हुए गए, 500-600 मील तक गए और उतरते ही फिर महफिल के मंच पर हाजिर हो गए।
1: यहाँ से मैं कलकत्ता गया, मद्रास गया, अपना जलंधर गया,
0: खुद ड्राइविंग करते हुए,
1: खुद ड्राइविंग करते। हमारा भारत देश इतना अच्छा है, आप जब तक ऐसे नहीं जाएंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा।
0: फिर आपके इस गान प्रस्तुति में ख्याल तो आपने पक्का बनाया ही, उसके साथ ही साथ भक्ति संगीत, जिसको हम मराठी में संतवाणी के नाम से आपका बहुत ही मशहूर हुआ है प्रोग्राम, तो संतवाणी का आरंभ आपके गुरुवर की प्रेरणा से हुआ?
1: हाँ, देखिए हमारे गुरु जी बीमार हो गए, तो उनके बीमार होने के बाद डॉक्टर लोगों ने बोला कि अब ये प्रोग्राम मत करो, तो उन्होंने पूछा घर में अगर भजन करो तो चलेगा? हाँ ठीक है, घंटा। उस वक्त वो जो गाते थे और हमको जो पुरंदरास भजन याद थे और हिंदी का भी जो बजे हरिको सदा, इसका ट्यूनिंग जो है हमारे गुरु जी ने किया है, तो

0: करके शुरू हुआ।
1: विदेशों में भी वहाँ पे संत वाणी पर लोग रिझते हैं बहुत।
0: हाँ, वो पंजाब गया तो बोलते हैं वो विठल का गाना सुनो, उनको समझ में नहीं आता।
1: हाँ, सच है।
0: लेकिन वो विठल का गाना सुनो, असल में क्या है, स्वर सच्चा है तो सब सच।
1: अब आपके गायन में तुरंत असर पैदा करने का जो गुण है,
0: जी।
1: क्या आपने नाटकों में भूमिकाएं की थी, पार्ट अदा किए थे?
0: ये हमारे गुरु जी की वजह से, क्योंकि उनके खुद की बालगंधर्व जैसी कंपनी थी।
1: भाग्यश्री नाटक था।
0: हाँ वो है, वो हमारे दरा बेंद्रे थे, उनके छोटे भाई लक्ष्मण राव बेंद्रे, उन्होंने लिखा था, वो नाटक किया था। और परिवर्तन करके हमारे होलकर नारायण राव करके थे, और उसमें हमारी मिसेस भी काम की थी, मैं हीरो और वो हीरोइन।
1: लगभग 60 वर्षों से अपना गाना सुनाते आ रहे हैं और हर कदम पर आप आगे ही बढ़ रहे हैं, और आज भी आप अपनी महफिलें जारी हैं। परसों आप कहीं और भी दूर दूर जाके आए, ऐसा हमने सुना।
0: मैसूर गया था, वहाँ डॉक्टर बाला मुरली कृष्णा है ना,
1: जी हाँ मालूम है,
0: उसके साथ हम जुगलबंदी करते
1: हैं। अच्छा,
0: उसके लिए गया था। और अभी पुट्टपर्ती गया था, गुरु पूर्णिमा के दिन ही प्रोग्राम था।
1: फिर आकाशवाणी के तो आप वर्षों से कलाकार रहे हैं।
0: 1941 से गा रहा हूँ, उस वक्त ये ऑडिशन वगैरह कुछ नहीं था।
1: फिर रिकॉर्डिंग्स जो हुए हैं आपके बहुत ज्यादा हुए हैं, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क तो आपकी बहुत सी निकली हैं,
0: जी
1: कैसेट्स भी निकली हैं, ध्वनि मुद्रिकाएं निकली हैं, तो चारों तरफ से आपको ये जो सफलता मिली है, जो शोहरत मिली है, इसके लिए आपको जितनी बधाई दी जाए, और आपके साथ हम इस दुनिया में रहते हैं इसके लिए अपनी खुशी जाहिर करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आकाशवाणी के स्टूडियो में आप आए।
2: सामने आप सुन रहे थे मारूफ क्लासिकल गुलूकार पंडित भीमसेन जोशी के साथ की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी डॉक्टर सी रंग संगराम जी ने। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है फिल्मी नगमे।

बचपन फिल्म में नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मौसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और समझ लीजिए, अब सुनिए ज़मीर फिल्म का नगमा कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, नगमा निगार समीर, मौसीकार आनंद मिलिंद।

मुझसे दोस्ती करोगे, इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज में। नगमा निगाते आनंद बख्शी, मौसीकार राहुल शर्मा। और समझ लीजिए, जब सुनिए प्रोग्राम की गई पेशकश। मोहम्मद रफी और आशा भोसले को, फिल्म है तीसरी मंजिल, नगमा निगार मजरू, मौसीकार आर डी बर्मन।

0: तू इसको कैसे मेरे पीछे एक लड़की।
1: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे बनारसी बाबू फिल्म का नगमा, और सामिली जब सिंह, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में प्रोग्राम की अगली पेशकश फिल्म है मेरा गांव मेरा देश।

में अपनी जोड़ी साथ।

कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा वादा।

0: भारत के ग्रैंड मास्टर आर परगना नंदा ने अमेरिका में ग्रैंड चेस टूर सेंट लुई रैपिड और ब्रिट्स खिताब जीत लिया है। 20 साल भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखीर सिंदारोव के खिलाफ आखिरी राउंड बराबरी पर खत्म करते हुए चैंपियनशिप जीती। परगनंदा ने 5 रोजा मुकाबले में शुरू से ही सबकत बरकरार रखी। बैडमिंटन में आज आसान में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालहा कोरिया मास्टर्स में खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। रक्षिता ने अपनी हमवतन साथी खिलाड़ी तन्वी शर्मा को क्वार्टर फाइनल में 21-18, 19-21, 19-21 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला एक और भारतीय खिलाड़ी अश्मिता चालहा से होगा। अश्मिता ने नंबर एक खिलाड़ी जापान की हिना आकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं। मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सो वूल यीक मैन वी छोंग की मलेशिया की जोड़ी से मुकाबला करेगी। 20 साल से कम उम्र की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के मोहम्मद अशफाक ने आज अमरीका के शहर युगने में कौमी रिकॉर्ड्स तोड़ा। इस जीत के साथ अशफाक ने मर्दों की 400 मीटर के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। 19 साल अशफाक ने अमेरिका के जैडेन के बाद दूसरी पोजीशन हासिल करके 45.81 सेकंड में अपनी दौड़ मुकम्मल की। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। भारत और चीन ने हकीकी कंट्रोल लाइन पर ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों मुल्कों ने सरहदी इलाकों में अमन और सुकून बरकरार रखने से इत्तेफाक किया। भारत और सिंगापुर ने भारत सिंगापुर जामे कलीदी शराकत दारी के खाके में उजागर 8 शोबों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त का जायजा लिया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में हथकरघे से मुतालिक 2025 के कौमी अवार्ड अदा किए। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर परगनानंदा ने अमरीका में सेंट लुई रैपिड और ब्रिट्स का अपना पहला खिताब जीता। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में भी कदारी 71 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है।
2: मीडियम वेब 326.7 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा वर्मा का नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन आज के इस युवाणी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फिल्मी गीत, गीतों की लहर, और साथ ही हम करेंगे कुछ विषयों पर चर्चा। तो लीजिए दोस्तों, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आज की बात से। दोस्तों, आज 7 अगस्त के इस विशेष अवसर पर हम सभी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहे हैं। यह केवल एक दिवस नहीं बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत, स्वदेशी भावना, आत्मनिर्भरता और लाखों बुनकर परिवारों के श्रम को सम्मान देने का अवसर है। दोस्तों, हथकरघा केवल कपड़ा बनाने की कला नहीं बल्कि यह भारत की आत्मा, परंपरा, संस्कृति और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्देश्य उन लाखों बुनकरों के योगदान को सम्मान देना जो अपने हाथों की कलाओं से भारत को विश्व भर में एक अद्भुत पहचान दिलाने के लिए अग्रसर है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके गांव,

कारीगरों और पारंपरिक कौशल में निर्मित है। दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को यानी आज ही के दिन को मनाया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की थी और 7 अगस्त की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन वर्ष 1905 में कोलकाता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर भारतीय उत्पादकों को अपनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में प्रथम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उद्घाटन किया। दोस्तों, तब से प्रत्येक वर्ष यह दिन पूरे देश में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। वर्ष 2026 का राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, मेलों और जागरूकता अभियानों के साथ मनाया गया। दिल्ली सहित अनेक राज्यों में हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित की गई और लाखों लोगों को स्थानीय बुनकरों के उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर सभी देशवासियों से हाथ से बुने वस्त्र पहनने, स्थानीय बुनकरों का समर्थन करने, सोशल मीडिया के माध्यम से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया। उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट बुनकरों को सम्मानित करने की पहल की गई, जबकि विभिन्न राज्यों में विशेष प्रदर्शनी और बिक्री मेलों का भी आयोजन हुआ। दिल्ली के सेंट्रल कॉलेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में वीव्स ऑफ इंडिया महोत्सव आयोजित किया गया आज के दिन, जिसमें देश भर की 116 से अधिक पारंपरिक बुनाई शैलियों को प्रदर्शित किया गया। हमारे देश के सबसे समृद्ध वस्त्र परंपरा वाले देशों में से एक माना जाता है। बनारसी सिल्क, चंदेरी, महेश्वरी, कांजीवरम, पटोला, पूंचमपल्ली, भागलपुरी सिल्क, कोटा डोरिया, बंधेज, इकत और जामदानी जैसी अनगिनत बुनाई परंपराएं हमारी सांस्कृतिक पहचान है। दोस्तों, हथकरघा उद्योग कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों में से एक है। लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़ते चले जाते हैं। यह उद्योग विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार और सेल्फ डिपेंडेंट प्रदान करता है। राजस्थान और हथकरघा परंपरा। दोस्तों, राजस्थान अपनी रंग बिरंगी संस्कृति के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं हमारे राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति को। अपनी रंग बिरंगी संस्कृति और हस्तशिल्प के लिए काफी फेमस है। यहाँ की कोटा डोरिया साड़ी, बहंदेज, लहरिया, बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट और ऊनी वस्त्र देश विदेश में काफी फेमस है। कोटा की कोटा डोरिया साड़ियाँ अपनी हल्की बनावट और सुंदर डिजाइनों के कारण काफी विशेष पहचान रखती है। जयपुर के सांगानेरी और बगरू छपाई को ही आप देख लीजिए, जो भारतीय वस्त्र कला की उत्कृष्ट मिसाल है। राजस्थान के अनेक बुनकर परिवार पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखते हैं। उनका कौशल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज के युवाओं को भूमिका भी इसमें जरूरी हो जाती है, क्योंकि युवा यदि भारतीय वस्त्रों को अपनाए, स्थानीय उत्पाद खरीदें और सोशल मीडिया के माध्यम से उनका प्रचार करें, क्यों नहीं हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा मिल सकती है। फैशन केवल आधुनिकता नहीं है, वास्तविक फैशन वह है जिसमें संस्कृति, पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव हो। युवाओं को चाहिए कि वे वोकल फॉर लोकल की भावना को अपनाए, भारतीय बुनकरों के उत्पादों को प्राथमिकता दें। हथकरघा उद्योग अनेक चुनौतियों का आज भी सामना कर रहे हैं, जिनमें मशीन निर्मित वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती लागत, बाजार तक सीमित पहुंच। दोस्तों, इन चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। प्रशिक्षण, विपणन, डिजाइन विकास और डिजाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

दोस्तों, एक बार एक विदेशी पर्यटक भारत आता है। उसने एक बुनकर को घंटों तक कंघे पर काम करते देखा। उसने पूछा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो जबकि मशीन यह काम कुछ ही मिनटों में कर सकती है। बुनकर मुस्कुराया और बोला, मशीन कपड़ा बनाती है लेकिन मेरे हाथ उसमें संस्कृति, परंपरा और भावनाएं बुनते हैं। यह जवाब सुनकर पर्यटक भावुक हो गया। वास्तव में हथकरघा केवल धागों का मेल नहीं बल्कि भावनाओं का ताना बाना है। जहां श्रम का सम्मान होता है वहीं समृद्धि का निर्माण होता है। हथकरघा केवल वस्त्र नहीं भारत की संस्कृति का जीवन इतिहास है। स्थानीय खरीदे, बुनकर बचाएं, संस्कृति सजाएं। हर धागे में कहानी है, हर बुनाई में एक विरासत है।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, इस गीत से पहले हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में। लीजिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कुछ नए विषयों के साथ। हम बात करेंगे नशा मुक्ति अभियान। नशा जीवन को नाश नहीं, जीवन नशे को हराए, यही सच्ची जीत है। दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम। यह विषय जो केवल एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र की चिंता का विषय है। दोस्तों, यह एक ऐसी बुराई है जो धीरे धीरे इंसान की सोच, स्वास्थ्य, परिवार और सपनों को निगल जाती है। शुरुआत में यह एक आदत लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत लत बन जाती है और फिर जीवन पर हावी हो जाती है। आज के समय में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन युवाओं के बीच चिंतों का विषय बनता जा रहा है। कई बार लोग फैशन के चलते, दोस्तों के दबाव के चलते, तनाव या जिज्ञासा के कारण इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके बाद इसके परिणाम

बहुत जोखिमपूर्ण होते चले जाते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है ना, वो संसार की हर चुनौती को जीत सकता है। नशा कुछ पल की खुशी देता होगा, लेकिन जीवन भर का दुख दे जाता है। सपनों का नाश करो, सफलता का नशा करो, मेहनत का नशा करो, नशीले पदार्थों का नहीं। एक छोटी सी प्रेरक कहानी से इस विषय को हम समझेंगे। एक गांव में राहुल नाम का एक होनहार युवक रहता था। वो बच्चा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। उसके माता पिता उससे बहुत उम्मीदें रखते थे। कॉलेज में कुछ नए दोस्तों के साथ उसकी दोस्ती हुई। दोस्तों ने मजाक मजाक में उसे सिगरेट पीने के लिए कहा। राहुल ने मना किया, लेकिन बार बार कहने पर उसने एक बार कोशिश कर ही ली। धीरे धीरे दोस्तों वह आदत बन गई और सिगरेट से शराब और शराब से दूसरे नशों तक पहुंच उसकी चलती चली गई। कुछ सालों बाद राहुल की पढ़ाई छूट गई, परिवार परेशान रहने लगा, स्वास्थ्य बिगड़ गया और आत्मविश्वास उसका खो गया। एक दिन उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। माँ ने कहा, बेटा, हमने तुम्हें सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाया। माँ की आंखों से आंसू राहुल के जीवन का मोड़ बन गए और उसने नशा छोड़ने का संकल्प लिया। कठिन संघर्षों के बाद वह सफल हुआ और आज वह नशा मुक्ति अभियान का स्वयं सेवक बनकर युवाओं को जागरूक कर सकता है। दोस्तों, यह राहुल नाम का युवक जो नशे से दूर जा सकता है, एक सफल व्यक्ति बन सकता है। क्यों ना देश का हर युवा नशा छोड़कर भारत को नशा मुक्त भारत बना सकता है। यह कहानी बताती है कि गिरना गलती हो सकती है, लेकिन उठना हमारा खुद का निर्णय हो सकता है। जब तक हम अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो हम दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। माइंड सेट इज एवरीथिंग होता है दोस्तों। अपने माइंड को जीत लिया, आप हर लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नशा शुरू कैसे होता है? कई लोग सोचते हैं कि नशा केवल बुरी संगति की वजह से होता है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों का दबाव, तनाव और चिंता, बेरोजगारी। दोस्तों, बेरोजगारी होती है तो क्या नशा करने से बेरोजगारी दूर हो जाती है? बल्कि बढ़ती चली जाती है। एक बार उस पर गौर करने की ज़रूरत होती है। आजकल फैशन और दिखावे के लिए भी कई युवा नशे की बुरी संगति में ढलते चले जा रहे हैं। दोस्तों, चाहे कारण कोई भी हो, परिणाम लगभग हमेशा नुकसानदायक होता है। फेफड़ों की बीमारी, हार्ट डिजीज, कैंसर का खतरा, मानसिक तनाव, स्मरण शक्ति में कमी, नींद की समस्या, ये सभी बीमारियां आम सी होती चली जाती है। पूरा परिवार नशे की गिरफ्त में आ जाता है तो पूरे घर का वातावरण भी प्रभावित होता चला जाता है। नशे की राह अंधेरी है, इसमें केवल हार ही है। जो इससे दूरी रखता है उसका जीवन गुलजार है। मेहनत को अपना साथी बनाओ, सपनों को अपनी पहचान बनाओ, नशे से रिश्ता तोड़ दो, जीवन को वरदान बनाओ। युवाओं के लिए हमारा संदेश कि देश का भविष्य आपके हाथों में है। आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह, आपकी प्रतिभा ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अगर युवा सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो देश प्रगति करेगा, लेकिन अगर युवा नशे की गिरफ्त में आ जाएं, तो हमारा समाज प्रगति की ओर नहीं अग्रसर हो सकेगा। इसलिए खेलों से ज़्यादा जुड़िए, किताबों से मित्रता कीजिए, संगीत सीखिए, योगा आसन कीजिए, ध्यान कीजिए, सकारात्मक मित्र बनाइए। दोस्तों, एक स्कूल में दो दोस्त थे, अमित और सुमित। अमित काफ़ी मेहनती था और सुमित धीरे धीरे गलत संगति में पड़ गया। टाइम बीतता गया, अमित ने प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली और अधिकारी बन गया। सुमित नशे का शिकार हो गया और एक दिन दोनों की मुलाकात हुई। सुमित ने कहा, काश मैंने भी उस समय यही रास्ता चुना होता तो
तो आज मैं भी एक बड़ा अफसर बन का होता। दोस्तों, जीवन हमें रोज विकल्प देता है, सही चुनाव ही भविष्य बनाता है। हर दिन हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर आता है, आपके हाथों में है कि आप इसे संवार लो या फिर उसे बिगाड़ दो। नशे की समस्या केवल या सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं, इसमें पूरे समाज की भी भागीदारी जरूरी है। माता पिता की भूमिका बच्चों से संवाद करें, उनकी मित्र मंडली पर ध्यान दें, प्रेम और विश्वास का वातावरण बनाएं। शिक्षकों की भूमिका विद्यार्थियों को जागरूक करें, जीवन मूल्यों की शिक्षा दें, प्रेरक गतिविधियां आयोजित करें। युवाओं की खासकर भूमिका की नशे के खिलाफ अभियान चलाएं, अपने मित्रों को जागरूक करें, सोशल मीडिया का सकारात्मक यूज़ करें। जिंदगी अनमोल है, इसे नशे के हवाले मत करो। नशा कमजोर इच्छा शक्ति की पहचान है, जबकि आत्म संयम मजबूत पर्सनैलिटी की पहचान है। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि नशे जैसी छोटी चीज आकर्षित ही न कर पाए। आप बड़े हो या नशा बड़ा है, अपने आप को उस नशे से जीत लो। दोस्तों, नशा किसी समस्या का समाधान नहीं, यह स्वयं एक बड़ी समस्या ही है। तो आइए आज से संकल्प लें कि हम नशे के जागरूकता अभियानों में भाग लेंगे, दूसरों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे, स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। लीजिए, बातें तो चलती रहेगी, आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, ब्रिक्स युवा मंच, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में युवाओं का सहयोग, लीजिए इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में युवाओं का सहयोग कैसे है। दोस्तों, आज का युग युवाओं का युग है। किसी भी देश की प्रगति उसकी आर्थिक शक्ति, सामाजिक विकास और नवाचार की क्षमता काफ़ी हद तक उसके युवाओं की विकासशीलता पर डिपेंड करती है। दुनिया की लगभग आधी आबादी युवा ही तो है, और यही युवा प्रगति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक विकास को बढ़ावा दें तो पूरा विश्व विकासशीलता की ओर चलता चला जाएगा। यही युवा आने वाले कल के वैज्ञानिक, उद्यमी, शिक्षक, नीति निर्माण और राष्ट्र निर्माता है। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स देशों ने युवाओं को एक साझा मंच प्रदान किया है, जिसे ब्रिक्स युवा मंच के रूप में जाना जाता है। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह के रूप में शुरू हुआ। आज ब्रिक्स का दायरा और भी व्यापक हो चुका है और यह विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्रिक्स देशों की आबादी, संसाधन, बाजार और युवा शक्ति विश्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए देशों ने युवाओं के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए युवा मंच की स्थापना की। दोस्तों, ब्रिक्स युवा मंच का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को एक दूसरे से जोड़ना, अनुभव साझा करना, वैश्विक चुनौतियों के समाधान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करना, डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास में सहयोग बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास करना, साथ ही साथ अनुसंधान को भी बढ़ावा देना। आज विश्व के अधिकांश विकासशील अर्थव्यवस्थाएं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इन चुनौतियों का समाधान युवा शक्ति के सहयोग से ही संभव है। दोस्तों, युवा नए विचार लाते हैं, तकनीकी नवाचार करते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन के वाहन बनते हैं। और यही कारण है कि देश में ब्रिक्स देशों में युवाओं को आर्थिक विकास का प्रमुख भागीदार माना जा रहा है। आज हमारा भारत दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप देशों में शामिल है। युवा उद्यमी नई टेक्नोलॉजी और नए व्यावसायिक मॉडलों के माध्यम से आर्थिक विकास में सहयोग दे रहे हैं। विश्व भर में ब्रिक्स युवा मंच युवाओं को अवसर देता है कि वे विभिन्न देशों के सफल स्टार्टअप मॉडल को समझें और उनसे सीखें। दोस्तों, जब भारत का युवा ब्राज़ील के कृषि नवाचारों, चीन की टेक्नोलॉजी उपलब्धियों, रूस के वैज्ञानिक अनुसंधानों, दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक उद्यमों से सीखता है तो वैश्विक सहयोग की नई संभावनाएं जन्म लेती है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

ब्रिक्स युवा मंच इन क्षेत्रों में सहयोग और ज्ञान की आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। आज जलवायु परिवर्तन भी पूरी दुनिया की चिंता का विषय है। ब्रिक्स देशों के युवा वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, प्लास्टिक मुक्त अभियान जैसे प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के कुछ युवा मिले। उन्होंने अपने अपने देशों की समस्याएं और समाधानों पर चर्चा की। ब्राजील के युवाओं ने कृषि तकनीक के अनुभव साझा किए। भारत के युवाओं ने डिजिटल शिक्षा के बारे में बताया। दक्षिण अफ्रीका के युवाओं ने सामुदायिक विकास के मॉडल प्रस्तुत किए। कुछ वर्षों बाद उन्होंने मिलकर एक ऑनलाइन मंच बनाया जो हजारों युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने लगा। यह कहानी बताती है कि सहयोग की शक्ति सीमाओं से कहीं बड़ी होती है। आज का समय प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सहयोग का भी समय है। दुनिया तेजी से बदल रही है दोस्तों। इस परिवर्तन में युवाओं की भूमिका सबसे ज़रूरी हो जाती है। हमें केवल नौकरी खोजने वाले युवा नहीं बनना बल्कि नए अवसर पैदा करने वाले युवा बनना है। हमें केवल समस्याओं की चर्चा नहीं करनी बल्कि समाधान का हिस्सा बनना है। केवल अपने विकास के बारे में नहीं सोचना बल्कि समाज और विश्व के योगदान में भी अपना योगदान देना है। युवा केवल भविष्य नहीं वर्तमान की सबसे बड़ी पूंजी है। जब युवा मिलकर सोचते हैं तो नई संभावनाएं जन्म लेती है, सृजनात्मकताएं जन्म लेती है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों, खुशियां बांटने से बढ़ती है, सहयोग करने से सफलताएं मिलती है। ब्रिक्स युवा मंच केवल एक अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं दोस्तों, बल्कि युवाओं के सपनों, नवाचार और सहयोग की शक्ति का प्रतीक है। तो आइए हम संकल्प लें कि हम शिक्षा, कौशल, नवाचार और सहयोग के माध्यम से अपने देश और विश्व के विकास में सक्रिय योगदान देंगे। युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। जब युवा एक साथ आगे बढ़ते हैं तो विकास की नई इबादत लिखी जाती है। विकास एक नई इबारत की ओर अग्रसर होता है। नीचे बातें तो चलती रहेगी दोस्तों, आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये फिल्मी गीत।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति, परंपराएं, लोक कलाएं और हस्तशिल्प विश्व भर में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। कश्मीर की कढ़ाई, राजस्थान की बंधेज कला, मध्य प्रदेश की गोंड कला, गुजरात की कच्छ कढ़ाई, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, बिहार की मधुबनी चित्रकला और दोस्तों अनेक लोक कलाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। लेकिन बढ़ते समय में आधुनिक टेक्नोलॉजी, मशीनों के बढ़ते यूज़ के कारण अनेक पारंपरिक कलाएं धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रही है। ऐसे समय में ज़रूरी है युवाओं का योगदान। दोस्तों, हस्तशिल्प केवल कला नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और जीवन शैली का एक दर्पण है। हस्तशिल्प कलाओं में हमारे पूर्वजों की सोच, रचनात्मकता और उनके अनुभव समाहित हुए हैं। प्रत्येक हस्तशिल्प

अपने क्षेत्र की पहचान, स्थानीय संस्कृति की कहानी कहता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसमें केवल रंग और आकार नहीं होते दोस्तों, बल्कि एक कलाकार का श्रम होता है और उसका समर्पण होता है। आज कई पारंपरिक कलाएं कलाकार आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मुख्य चुनौतियां हैं आधुनिक टेक्नोलॉजी की जानकारी का अभाव, युवाओं का पारंपरिक व्यवसायों से दूर होना और उचित मूल्य न मिल पाना। इन्हीं कारण तो ये कलाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में कुछ युवा रहते थे। उन्होंने देखा कि गांव के कारीगर, जो एक बुजुर्ग सुंदर हस्तशिल्प वस्तुएं बनाया करते थे, लेकिन उन्हें उचित बाजार नहीं मिल पाता। युवाओं ने मिलकर सोशल मीडिया पेज बनाया, उत्पादों की तस्वीरें साझा की और ऑनलाइन बिक्री शुरू की। कुछ ही महीनों में गांव के उत्पाद विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए। कारीगरों की आय बढ़ने लगी और कई युवा भी इस कार्य से जुड़ते चले गए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जब युवा और परंपरा साथ आते हैं तो विकास के नए रास्ते खुलते हैं। आज डिजिटल युग है, युवाओं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, ऑनलाइन प्रदर्शनियाँ आयोजित कर सकते हैं, ग्रामीण हॉट आयोजित कर सकते हैं, डिजिटल ट्रेनिंग दे सकते हैं, उत्पादों की ब्रांडिंग कर सकते हैं। जो समाज अपनी कला और संस्कृति को सहेजता है, वही अपनी पहचान को सुरक्षित रख सकता है। रंगों में इतिहास बंधा है, धागों में पहचान। हस्तशिल्प की हर रचना में छिपा हुआ है संस्कृति का मान। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, कलाओं को फिर जीवंत बनाएं। युवा शक्ति जब साथ चले, संस्कृति के दीप पुनः जले। दोस्तों, इसी विषय पे हम चर्चा और करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये फिल्मी गीत।

दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे हस्तशिल्प उत्पादों के बारे में, हमारी विलुप्त होती संस्कृति के बारे में। हस्तशिल्प का अर्थ यानी हाथों से बनाई गई कलात्मक वस्तु, इनमें कलाकार की कल्पना, मेहनत, कौशल और भावनाएं समाहित होती है। दोस्तों, हमने बात की राजस्थान की बंधेज, ब्लू पोटरी, कोटा डोरिया, गुजरात की कच्छ कढ़ाई और उत्तर प्रदेश, बिहार और कश्मीर अन्य राज्यों की कलाओं के बारे में। दोस्तों, हस्तशिल्प केवल सुंदर वस्तुएं नहीं, बल्कि लाखों लोगों के रोज

रोजगार का स्रोत भी है। किसी कलाकार का बनाया हुआ उत्पाद वस्तु में केवल सामग्री नहीं बल्कि उसकी मेहनत, अनुभव और कला की आत्मा भी शामिल होती है। डिजिटल युग का आज सभी प्रयोग कर रहे हैं, तो क्यों ना आज के डिजिटल तकनीक को और भी अच्छी तरह उसमें यूज़ करके कलाओं को सहेज सकते हैं। आइए आपको सुनाते हैं अब कार्यक्रम में अगला फिल्मी गीत।

लीजिए दोस्तों, जानेंगे आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को। आज ही के दिन 1880 में उचित वक्ता पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। आज ही के दिन 1996 को अमेरिका वैज्ञानिकों द्वारा 13,000 वर्ष पहले पृथ्वी पर गिरे उल्कापिंड के अवशेषों से मंगल ग्रह पर एक कोशिका वाले जीवों की होने की संभावना का पता चला। आज ही के दिन जन्मे 1925 में M.S. स्वामीनाथन, प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के अगुआ। लीजिए दोस्तों, ये तो थी आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। चलते चलते एक युवाणी कार्यक्रम का आखिरी गीत और सुन लेते हैं हम।

लीजिए दोस्तों, आज का युवाणी कार्यक्रम समाप्त करने की पूजा वर्मा को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ समय बाद 6:05 पर आप सुनेंगे सैराइकी। शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा चौपाल, आज इसमें आप सुनेंगे गीतारो गजरो और उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी भी दी जाएगी। रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। एक ही फिल्म से जानकारी और गीत, यह कार्यक्रम होगा रात के 8:15 पर। 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन समाचार संध्या 8:45 पर और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। 9:30 पर पंजाबी साप्ताहिक प्रोग्राम मिट्टी दी खुशबू और रात्रि

10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये थे आज के दिन प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। कल सुबह 6:10 पर भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम होगा वंदना। चिंतन का समय रहेगा सुबह 6:45 पर। खेतिहरा वास्ते ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 7:10 पर। इसमें चर्चा का विषय रहेगा लवणीय सिंचाई जल का सदुपयोग। मानस गान का सेस्वर पाठ आप सुनेंगे कल सुबह 7:20 पर। भाग संख्या होगी 329। सुप्रभात ये कार्यक्रम होगा कल सुबह 7:30 पर। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे धर्म निरपेक्षता भारत की श्रेष्ठता, क्षमा से बड़ा धर्म नहीं और विनयशील बने। कल सुबह 9:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। मरुमंगल यह कार्यक्रम होगा कल सुबह 9:10 पर। कलाकार रहेंगे मणिराम राठौड़। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत में युगल गान। और कल सुबह 10:00 आज के फनकार कार्यक्रम पेश किया जाएगा। फरमाइशी प्रोग्राम अनुरोध गीत आप सुनेंगे कल सुबह 11:00 से। कुछ बातें कुछ गीत यह कार्यक्रम होगा कल सुबह दोपहर में 12:05 पर। 12:30 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। कल दिन में 12:50 पर खेत खलिहान में आप सुनेंगे जानकारी पत्ता गोभी की उन्नत खेती। 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे राजस्थान के प्रमुख बांध, स्मार्ट पेरेंटिंग आज की जरूरत, तेल के दाग हटाने के स्मार्ट तरीके और सिंघाड़े के आटे से बनने वाले व्यंजन। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में आप फिल्मी गीत भी सुनेंगे। कल दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। युववाणी का समय रहेगा कल संध्या 5:00। कल शाम के 7:00 आप सुनेंगे किसान वाणी। संध्या 7:30 पर कार्यक्रम होगा चौपाल। और कल रात्रि 8:00 इस सप्ताह संसद में जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका यह कार्यक्रम होगा कल रात 9:30 पर। और कल रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम सैराय की।

भाई प्रकाश कौर ते सुरिंदर कौर दा गाया गीत सुनना ना लियो। आज कल साइबर फ्रॉड बहु वधेंदे पए हिन। तुसा सुनया हो सी के इंदे खाते चू 40,000 रुपये निकल गए। उन्होंने ऑनलाइन काम करेंदे होए 2 लाख रुपये गुआ गिदे। इंज हर महीने हजारा धोखे आलिया लेवन देवन दिया शिकायतां पईयां मिलेंदियां हिन। तुहाडे कोलू भी इंज दे फोन आवदे होवणगे कि तुहां को इनाम देवदे पए हां। अपने खाता नंबर दे आखरी 4 नंबर दस देवो। पैसे तुहाडे खाते विच पोसन की पोसन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैराइकी, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले की जाएंगी।
1: योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि विकास का एक सशक्त माध्यम। प्रदेश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कई आयोजन। जयपुर में ब्रिक्स देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक का समापन। किसानों और एमएसएमई के हितों को बढ़ावा देने संबंधी कई निर्णयों पर सहमति। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मानसून की सक्रियता से वर्षा का दौर जारी। कल झुंझुनू और सीकर में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा

0: कहा है कि हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। आज नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने के साथ साथ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया है।
1: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बुनकर बरीगा राम को खास किस्म वाली पट्टू साड़ी की उत्कृष्ट शिल्पकला, पारंपरिक बुनाई तकनीक और बेहतरीन डिजाइन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इधर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बुनकर सेवा केंद्र की ओर से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हाथ से बने प्रत्येक वस्त्र की अपनी अलग पहचान होती है और उसके प्रत्येक रेशे के साथ एक प्रेरक कहानी जुड़ी होती है। यही कारण है कि आज विश्व के प्रतिष्ठित ब्रांड भी भारतीय बुनकरों के साथ जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में उत्कृष्ट बुनकरों को राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस अवसर पर जयपुर के नेशनल हैंडलूम में पहुंचे और हथकरघा उत्पादों का अवलोकन करते हुए खरीदारी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से वोकल फॉर लोकल के तहत हथकरघा उत्पादों की खरीद करने का आह्वान किया।
2: देखिए, आज हैंडलूम डे है और राजस्थान में हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है। हथकरघा के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान में काम होता है और राजस्थान का हैंडलूम पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये हैंडलूम राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों में काम होता है और इसकी मांग बहुत अत्यधिक रहती है और ये देश और दुनिया में सभी जगह जाता है। और मैं आज राजस्थान के सभी जन से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रोडक्ट है, निश्चित रूप से उसको अपनाने का काम करेंगे।
0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत आज जयपुर में 16वीं ब्रिक्स वाणिज्य मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। बैठक में बदलती वैश्विक व्यापार व्यवस्था, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत बनाने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं को अधिक लचीला बनाने, एमएसएमई के अंतर्राष्ट्रीयकरण, व्यापार वित्त तक उनकी पहुंच बढ़ाने तथा डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए विकासोन्मुख, नियम आधारित और सर्वसम्मति पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। साथ ही खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक भंडारण से जुड़े विकासशील देशों के हितों की रक्षा पर भी जोर दिया गया। बैठक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि किसानों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के हितों को बढ़ावा देने वाले कई निर्णय रहे। बैठक में ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2030 को भी अंतिम रूप दिया गया। इस रणनीति को सितंबर 2026 में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतम राम मांझी ने यह विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के भुगतान में होने वाली देरी को दूर करना और विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में अब से कुछ देर पहले राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन बैठकों में किए गए फैसलों की जानकारी मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल एट @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया है। श्री बागड़े आज बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है और केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं से शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़कर समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इससे पहले राज्यपाल ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से कोटपुतली बहरोड के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया गया। मेले में 154 युवाओं को प्राथमिक स्तर पर रोजगार के लिए चयन किया गया। उधर हनुमानगढ़ जिला प्रशासन और उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय की ओर से 14 अगस्त को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। राजीव गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाले मेले में 30 से अधिक प्रतिष्ठित निजी कंपनियां भाग लेंगी, जो इच्छुक युवाओं को रोजगार के अवसर देगी। जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव ने मेले में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए QR कोड जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत रविवार को जयपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। अभियान के प्रदेश संयोजक और भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. मिथिलेश गौतम ने बताया कि तिरंगा यात्रा सुबह 9 बजे अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर बड़ी चौपड़ तक जाएगी। तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत भाजपा प्रदेश पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल होंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे 9 से 17 अगस्त तक सभी मंडलों, कार्यशालाओं, स्टेशनों और रेलवे प्रतिष्ठानों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित करेगा। अभियान के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के ज्यादातर भागों में आज भी मौसम सक्रिय रहने से कई इलाकों में भारी वर्षा दर्ज की गई। भरतपुर और जयपुर संभागों में कहीं कहीं तेज वर्षा हुई, वहीं कोटा, अजमेर और बीकानेर संभागों में मध्यम से हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी जयपुर में दिनभर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। सवाईमाधोपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, टोंक, चूरू सहित कई जिलों में मध्यम से तेज बरसात हुई। डीग से हमारी संवाददाता ने बताया कि जिले में भारी वर्षा के चलते जल भराव की स्थिति पैदा हुई है।
1: डीग जिले में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है। साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि इस बार की अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही कई निचले स्थानों पर जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है, जिसे लेकर जिला प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहा है। पहाड़ी कस्बे और उसके आसपास के कई इलाकों के लिए सिविल डिफेंस टीम को सक्रिय रखा जा रहा है, साथ ही डिजास्टर क्विक रिस्पॉन्स टीम भी स्थापित की गई है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
0: मौसम विभाग ने कल झुंझुनू और सीकर में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कई अन्य जिलों के लिए भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राज्य के पूर्वी इलाकों में मॉनसून सक्रिय बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली अरुंधति चौधरी का कोटा पहुंचने पर स्वागत किया गया। स्वर्ण पदक विजेता ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए राष्ट्रमंडल खेलों में अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि से प्रदेश में बेटियों के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हथकरघा केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि विकास का एक सशक्त माध्यम। प्रदेश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कई आयोजन। जयपुर में ब्रिक्स देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक का समापन। किसानों और MSME के हितों को बढ़ावा देने संबंधी कई निर्णयों पर सहमति।

0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने युवाओं से नशे से दूर रहकर सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मॉनसून की सक्रियता से वर्षा का दौर जारी, कल झुंझुनू और सीकर में अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जुलाई महीने में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बे का दौरा किया। फूलपुर स्टेडियम में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने लगभग 176 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें बिजली, चिकित्सा, खेल और पार्वती बांध से जुड़े काम शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले भर में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर संतों, महंतों और गुरुओं का सम्मान किया गया। तीर्थराज मचकुंड में विशेष धार्मिक आयोजन और भंडारों का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर गुरु शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले में मन दर्पण 2 अभियान शुरू किया गया है। अभियान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और आत्महत्या रोकथाम के लिए 5 विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की 4 बालिका कैडेट्स ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय बालिका राष्ट्रीय एकता एवं ट्रैकिंग शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय की टीम ने 11 में से 9 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। कैडेट्स ने कई कठिन हिमालयी ट्रैक सफलतापूर्वक पूरे किए। चंबल नदी के कटरा घाट पर इन दिनों नन्हे घड़ियाल प्रकृति प्रेमियों का आकर्षण बने हुए हैं। हालांकि अंडों से निकलने के बाद मॉनसून के दौरान चंबल नदी का तेज बहाव इनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश घड़ियाल शावक मॉनसून की पहली तेज बरसात में ही बह जाते हैं। उधर मचकुंड क्षेत्र के लोंगपुर पहाड़ पर पैंथर की गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके बाद वन विभाग ने निगरानी चौकी स्थापित की है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में जिले में मॉनसून की पहली अच्छी बारिश दर्ज की गई। धौलपुर शहर में लगभग 45 मिलीमीटर और जिले में औसतन 70 मिलीमीटर बरसात हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली और किसानों ने खरीफ फसलों के लिए इसे लाभदायक बताया। जिले में इन दिनों ग्रामीण शहरी सेवा शिविरों के फॉलो अप शिविर लगाए गए हैं। इससे पहले लगाए गए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा जिला कलेक्ट्रेट में की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और आमजन को दिए जा रहे लाभों की समीक्षा की गई और शिविरों के प्रभावी संचालन पर जोर दिया गया। राजस्थान समान नागरिक संहिता समिति की ओर से भरतपुर में संभाग स्तरीय जनसुनवाई में धौलपुर जिले के जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने समिति के सामने अपने कई सुझाव रखे। आगरा रेल मंडल की मेरी सहेली योजना के तहत अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले 3 महीनों में इस योजना के माध्यम से लगभग 64,800 महिला यात्रियों को सहायता प्रदान की गई। चंबल नदी में अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए केंद्रीय अधिकारिता प्राप्त समिति ने धौलपुर और मुनाना क्षेत्र की निगरानी चौकियों का निरीक्षण किया। समिति ने निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हाई रेंज CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे अभियान के तहत विद्यालयों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें विद्यार्थियों को तंबाकू, शराब और अन्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। राजस्थान फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बालिका जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला तसीमो के फुटबॉल ग्राउंड पर खेला गया। फाइनल मुकाबला धौलपुर और उदयपुर के बीच हुआ। धौलपुर ने पेनल्टी शूट के बाद

0: मिले सडन डेथ में 1-0 से उदयपुर को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो, हथकरघा केवल काम धंधा रो साधन नहीं है बल्कि विकास रो मजबूत जरियो है। प्रदेश में आई राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके के आयोजन। जयपुर में आई ब्रिक्स देशारा वाणिज्य मंत्रियों री मीटिंग पूरी भी। किसाना और एमएसएमई रा भला ने बधावो देवणु जुड़िया कई फैसला माथे सहमति। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नौजवानों नशाओं दूर रह सकारात्मक जिंदगी जीवन बाबत कहो। और प्रदेश रा घनखर हलका माए चौमासा री चोखी बिरखा। काल झुंझुनू और सीकर माए घनी जोरदार बारिश सारू चेताई चियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो है कि हथकरघा हलको केवल कमाई रो जरियो नहीं है बल्कि सगला रा विकास रो मजबूत माध्यम है। वे आज नई दिल्ली में राखी जिया 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम में बोल रही हैं। राष्ट्रपति कहो कि हजारा बरसाओं हथकरघो भारत री संस्कृति और सभ्यता रो अटूट हिस्सो रहो है। वे कहो कि ओ हलको देश री समृद्ध विरासत न हेर राखण सागे नौकरी धंधा महिलावां ने मजबूत बनावण कला संस्कृति और कुदरत प्रेम नई बधावो दिनो है।
2: हजारों वर्षे हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ।
1: कार्यक्रम में राष्ट्रपति साल 2025 रा संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार देर कारीगरा ने नवाजा। बाड़मेर जिला रा बुनकर बरीगा राम नई खास किस्म वाली पट्टू साड़ी री बेहतरीन बुनाई और डिजाइन सारू राष्ट्रीय पुरस्कार देर नवाजी चियो। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके बुनकर सेवा केंद्र री ओर राज्य स्तर रो कार्यक्रम जयपुर रा जवाहर कला केंद्र माए राखी चियो। इन माए उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ कहो कि हाथ री कारीगरी बनाई जिया हर कपड़ा री न्यारी पहचान वह है। वह बेहतरीन काम करण वाला बुनकरा ने राज्य स्तर रा बुनकर पुरस्कार देर नवाजा। ये मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा नेशनल हैंडलूम माए हथकरघा माथे बनाई जा कपड़ा न निरख्या और खरीददारी कीनी। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका वे जनताओं वोकल फॉर लोकल रातेत हथकरघा रे जरिए बनाई जा सामान री खरीदी री अरज कीनी।
3: देखिए आज हैंडलूम डे है और राजस्थान में हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है। हथकरघा के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान में काम होता है और राजस्थान का हैंडलूम पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये हैंडलूम राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों में काम होता है और इसकी मांग बहुत अत्यधिक रहती है और ये देश और दुनिया में सभी जगह जाता है। और मैं आज राजस्थान के सभी जन से कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रोडक्ट है निश्चित रूप से उसको अपनाने का काम करेंगे।
1: ब्रिक्स देशां री भारत री सदारत माए वेवण वाली मीटिंग पहली आ देशां रा वाणिज्य मंत्रियां री 16वीं मीटिंग आज जयपुर माए पूरी भी। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल री सदारत माए भी मीटिंग माए ब्रिक्स सदस्य देशां रा व्यापार मंत्रियां और प्रतिनिधिमंडल दुनिया री बदलती कारोबारी व्यवस्था बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली ने मजबूत बनावण वैश्विक मूल्य श्रृंखला ने बत्ती लचीली बनावण एमएसएमई इकाइयां ने दुनिया रो बाजार मुहैया करावण व्यापार वित्त ताई वारी पहुंच और डिजिटल सेवावां ने बढ़ावो देवण सरीखा खास मुद्दा माथे चर्चा कीनी। मीटिंग में विश्व व्यापार संगठन ने केंद्र में राखता थका विकास वाली नियम आधारित और सगणा री एक राय माथे आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली री

0: प्रतिबद्धता दोहराई ची। मीटिंग री खास उपलब्धि किसाना और एमएसएमई कारोबारियां रा भला न बधावो देवन वाला फैसला रही। मीटिंग में एमएसएमई सारू व्यापार वित्त न आसान बनावण, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में मदद बधावण, कारोबार नु जुड़िया कागजात न डिजिटल बनावण और सरहद पार डिजिटल सेवावां न बधावो देवण जुड़ी कार्य योजनावां ने मंजूरी दीरी जी। इस आगे ब्रिक्स आर्थिक साझेदारी रणनीति 2030 नई अंतिम रूप दियो चियो, जिन्हें आवता महीना नई दिल्ली में होवण वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नेताओं की मंजूरी सारू पेश करी जावेला। संसद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026 पास करती नो है। वो बिल राज्यसभा सोमवार ने पास करती नो हो। लोकसभा की कार्रवाई एक बार टणिया पाछे पाछे शुरू हुए ताई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी वो बिल पेश की नो। इनरो मकसद एमएसएमई इकाइया ने चुकारा माए मोड़ो भेवण ने दूर करनु और झगड़ा ना निपटारा रा काम ने आसान बनावनु है। आज जयपुर माए राज्य मंत्रिमंडल री मीटिंग भी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा री सदारत माए भी मीटिंग माए कई खास फैसला करी चिया। आ फैसला री जानकारी मंत्रिमंडल रा सदस्य खबर नवीसा ने देवेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े नौजवानों नशाओं दूर रहर स्वस्थ और सकारात्मक जिंदगी जीवन बाबत कहो है। वह आज बांसवाड़ा जिला रा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय माए राखी जी राष्ट्रीय संगोष्ठी माए बोल रहा है। श्री बागड़े खास तौर जनजातीय हलकां रा नौजवानों बनाई लिखाई खेल और रचनात्मक कामाऊं जोड़र समाज और देश बनावन रा काम माए योगदान देवन बाबत कहो। इनु पहली राज्यपाल जिला कलेक्टर एसपी और दूजा अहलकारां सागे मीटिंग कीनी। वह नशा मुक्ति टीबी री बीमारी खत्म करण और विकास और जनता रा भलाऊं जुड़िया मुद्दा माथे चर्चा कीनी। इनु पहली राज्यपाल सर्किट हाउस माए एक पेड़ माँ के नाम अभियान रा तहत पौधा रोप्या। भारतीय जनता पार्टी कानून चलाई चिया हर घर तिरंगा अभियान राते जयपुर में ई दीतवार ने तिरंगा यात्रा निकाली जावेला। अभियान रा प्रदेश संयोजक और भाजपा रा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर मिथिलेश गौतम बतायो कि तिरंगा यात्रा समारे 9 बजे ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल बड़ी चौपड़ ताई निकाली जावेला। तिरंगा यात्रा में भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा समेत जनता रा नुमाइंदा और जनता शामिल फैला। उत्तर पश्चिम रेलवे री ओर वहीं 9-17 अगस्त ताई सगला मंडला टेसना और रेलवे रा प्रतिष्ठाना माए हर घर तिरंगा कार्यक्रम रख्या जावेला। अरब मौसम प्रदेश रा घनखर हलका माए आज ही चोखो में बरसियो। भरतपुर और जयपुर संभाग माए कठे कठे तेज बारिश हुई। कोटा अजमेर और बीकानेर संभाग माए हल्की बारिश दर्ज करी ची। राजधानी जयपुर में आखा दिन रिमझिम बारिश चलती रही। सवाई माधोपुर दौसा भरतपुर अलवर टोंक और चूरू समेत कई जिला माए बरसात रा समाचार है। माणी डीग खबर नवीस बतायो कि जिला माए फिया चोखा में कई ठोणा पानी भर गयो।
1: डीग जिले में इन दिनों भारी बारिश हो रही है जिससे मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को उमस और गर्मी से काफी राहत मिली है। साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं क्योंकि इस बार की अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही कई निचले स्थानों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है जिसे लेकर जिला प्रशासन तत्परता से कार्य कर रहा है। पहाड़ी कस्बे और उसके आसपास के कई इलाकों के लिए सिविल डिफेंस टीम को सक्रिय रखा जा रहा है। साथ ही डिजास्टर क्विक रिस्पॉन्स टीम भी स्थापित की गई है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी।
0: मौसम विभाग काल झुंझुनू और सीकर माए जोरदार बिरखा वेवण सारू चेतायो है जबकि दूजा जिला सारू भारी बारिश रो अनुमान है। महकमा रे मुजब आवता एक सप्ताह ताई राज्य रा उगनी हलका माए चौमासारी बिरखा चालती रहवण रा आसार है। लाडला दिना पूरा फिया राष्ट्रमंडल खेलां री मुक्केबाजी होड़ माए भारत ने सोना रो तमगो दिरावण वाली अरुंधति चौधरी रो वाना शहर कोटा पुगण पर जोरदार स्वागत करी चियो। अरुंधति दूरदर्शन सागे बातचीत करता थका कहो कि एक बेटी रे

0: सोनारो तमगो जीतनु महिलाओं रा मान जुड़ी सोच बदल रही है।
1: मुझे ये था कि पहला कॉमनवेल्थ है मेरा और मैं पहला ही गोल्ड लेकर आऊंगी। और मेरी तीन फाइट हुई, तीनों ओपोनेंट मेरी बहुत अच्छी थी। दो मेरे लिए थोड़ी टफ रही क्योंकि वो मेरे गेम के ऑपोजिट थी, तो उनसे खेलना मेरे लिए एक चैलेंज रहा। लेकिन जो फाइनल बाउट जिनसे हुई इंग्लैंड से, उनका गेम काफी टेक्निकल था और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ खेल के। राजस्थान के लिए ऐसा बोला जाता है कि यहाँ लड़कियों पे बंदिश है, पर अगर आप देखेंगे कि पिछले दो दिन से जयपुर से कोटा तक का जो मेरा सफर था उसमें एक लड़की के मेडल का ही जश्न मनाया जा रहा था, तो मुझे खुशी है कि लोगों की सोच बदल रही है और गेम्स को भी इम्पोर्टेंस मिल रही है।
0: चूरुमाए आज स्कूल बसा री औचक जांच करी ची। इन दौरान स्कूल बसा और दूजी बाल वाहिनियां माए गाड़ी री फिटनेस, जरूरी कागजात, लाए बुझावन जुड़िया सामान, शुरुआती इलाज रा सामान, मुश्किल बगत माए गाड़ियों बाहर निकलबा रा दरूजा, गाड़ी रा बुतारा मुजब इन माए बैठन वाला विद्यार्थियां री तादाद और गाड़ी माथे जरूरी जानकारियां मांडन री जाँच करी ची। जाँच रे दौरान चार गाड़ियां रा चालान करी चिया। सीकर माए फतेहपुर रोड माथा नुओ आधार सेवा केंद्र खोलो जावेला। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय काल इनरो उद्घाटन करेला। इनु सीकर और RSR रा हलकानी जनता ने आधार नामांकन समेत बायोमेट्रिक अपडेट सेवा एक ही ठौर मिल सकेला। कोटपुतली बहरोड री सरकारी ITI माए कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग री ओरू रोजगार मेलो लगाई चियो। मेला माए 154 नौजवानों ने नौकरी रा प्रस्ताव दिया चिया। हनुमानगढ़ माए जिला प्रशासन और उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय री ओरू 14 अगस्त ने रोजगार मेलो लगायो जावेला। राजीव गांधी स्टेडियम माए राख्या जावन वाला ई मेला माए 30-32 कंपनियां नौजवानों ने नौकरी रा मौका देवेला। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव मेला माए ऑनलाइन पंजीकरण सारू QR कोड जारी कीनो है। भारत आवता साल पहला ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव री मेजबानी करेला। आज मुंबई माए ब्रिक्स वेव्स बाजार रे दौरान इनो ऐलान करीचियो। फिल्म और मनोरंजन हलका माए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने मजबूत बनावन रा मकसद कई करार रोई ऐलान करीचियो। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ली रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो, हथकरघा केवल काम धंधा रो साधन नहीं है बल्कि विकास रो मजबूत जरियो है। प्रदेश में आई राष्ट्रीय हथकरघा दिवस रे मौके कई आयोजन। जयपुर में आई ब्रिक्स देशाना वाणिज्य मंत्रियां नी मीटिंग पूरी हुई। किसाना और MSME रा भला ने बधावो देवणु जुड़िया कई फैसला माथे सहमति। राज्यपाल हरिभाव बागड़े नौजवानों नशाओं दूर रह सकारात्मक जिंदगी जीवन बाबत कहो। और प्रदेश रा घणखर हलका माए चौमासा री चोखी बिरखा। काल झुंझुनू और सीकर माए घणी जोरदार बारिश सारू चेताई चियो। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल में गीता रो गजरो।

चौपाल कार्यक्रम सुनने सगळ्या परिवाराने भुरूबाई गी घणी घणी राम राम, मोकळी मोकळी राम राम। श्रोताओं, आज दिन शुक्रवार गो है, आपां जाणा ही आ कि आज आपां बनावांगा गीतां को गजरो थारी फरमाइश पर। सदा तरियां कार्यक्रम की शुरुआत करा आपां भजन शू सुनो सा।

सुनियो भजन, अब आपने कने जिका कागतिया भुगता होया है बंगमा गांव झाजड़िया आली सूँ कागत भेजो है आपने विजय झाजड़िया खुशी राम रणवा मोहन लाल मेला पाला राम राम स्वरूप दलीप और काना राम मसीता डब वाली सूँ दर्शन लोट इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर हनी लोट।

सुनियो गीत, अगलो संदेश मिलियो आपां ने बिरम गाम शू भेजन वाला है अजीत भावसार, प्रमीला भावसार, भावेश सन्नी भावसार, आदर्श नगर मलोट पंजाब शू राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, निवान शर्मा। अगलो संदेश मिलियो है आपां ने सूरतगढ़ शू भूपेंद्र मिशन, परभजोत मिशन, बेबी जानविका। श्री गंगानगर शू संदेश भेजो है नेकी राम बंसीवाल, जोनी बंसीवाल, धनराज बंसीवाल। गांधीनगर गुजरात शू सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल, निशा। रगनी छत्तीसगढ़ शू दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। गांव हिपरसोगा तहसील ओसा जिला लातूर शू उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। गांव चार एम शू कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत, जसदीप। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली शू गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, अशोक। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड शू संदेश भेजनिया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेरा जहां। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर शू संदेश भेजो है आपने मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान अब्बासी। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ शू रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। वर्ली मुंबई शू नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान। सूरतगढ़ शहर शू लवली फूलिया और बांगो पूरो परिवार। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ शू महाराज कीर्तनपुरी गोसाई, लक्ष्मीन देवी गोसाई, जोगेशपुरी,

ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। कासम कॉलोनी सनावदू, यूनिस खत्री, शफी खत्री, इद्रिश खत्री, नूरू मीणा, इरफान मीणा, कासिफ मीणा। कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय, लक्ष्मी सावनकर, राकेश, ऋषिता। सूरतगढ़ से लेखराज, पवन कुमार, रवि कुमार, सुरजीत सिंह, रणवीर। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम अंसारी। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक गोहर और तन्वी गोहर। सागर है जयपाल यादव। सुनावा थाना अगलो गीत।

सुनियो गीत, अगलो संदेश जिको आपने मिल्यो है वो है मंडी के श्री सिंहपुर छू। भेजन आला है बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष, विश्वजीत, मोहनलाल प्रजापति। राइस नगर छू आपने संदेश भेजो है धनराज भंबू, सोहनलाल जांगीड़, चेतन राम सारस्वा, प्रदीप सारस्वा, राजेंद्र कासनिया, अरविंद कासनिया, विजय कासनिया, आशीष भांबू। अगली फरमाइश भेजी है अपने जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। गांव सादेवाला सिरसा हरियाणा से रामेश्वर माहर, परमेश्वरी माहर, जिगर जानवी, सीमा मिश्रा। गो गीत फरमाइश में भेजो है गांव घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम ढूकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढूकिया, इवा धारणिया। गांव बनवाला हनुमंता फाजिल का पंजाब शू संदेश भेजनिया है विनोद, मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, माँ विद्या देवी और पूरो मायल परिवार। पोटिया कला दुर्ग शू संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। अगली फरमाइश है भेजी है गांव पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ शू दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा शू भेजन आला है संदेश प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। बालोदा छत्तीसगढ़ शू देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डोली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। हनुमानगढ़ शू संदेश भेजो है आपने सागरमल भार्गव। भोपालगढ़ राजस्थान शू फरमाइश आई है धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार। गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब शू फरमाइश भेजी है ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत, बेबी गरिमा बगड़िया। सादुल शहर शू रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। अगली फरमाइश है

इंदिरा कॉलोनी महामंदिर जोधपुर राजस्थान शू भेजनाला है ठाकुर तेजदान चारण पिंगावाला चौक गोराया जालंधर शू संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ मन्नत मक्कड़ भरत मक्कड़ कमल साहनी व्यास कॉलोनी बीकानेर शू डॉक्टर अशोक कुमार शाही श्रीमती संतोष शाही राजश्री गौरव शाही। अगलो संदेश मिलियो है आपने गांव हिगंडी आलोट जिला रतलाम एमपी शू भेजन वाला है जगदीश धाकड़ नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ शिवांगी धाकड़। गांव ढाणी लाल खां नोर शू फरमाइश भेजी आपने जावेद खां अरमान खां इमरान खां सीमा बानो विनोद खां। सुनामा थारी फरमाइश पर ओ गीत।

सुनियो गीत, अगलो संदेश मिलियो आपां ने 19 जी डी शू भेजन वाला है गुरतेज ओलख उदयपुर राजस्थान शू। फरमाइश आई है रमेश नाचाणी, भारती नाचाणी, विनीत नाचाणी, मिथिल नाचाणी। मंडी केसरी सिंहपुर शू संदेश भेजियो आपने श्यामलाल, राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार, चिमनलाल। अगलो संदेश आपने मिलियो है पूनम चंदन, कोमल, अंकुश, लक्ष्य, रवि कुमार। हनुमानगढ़ जिले शू फरमाइश आई है आपने कने सागरमल जी की। जालंधर पंजाब शू संदेश भेजो आपने सोनू, रविराज, गुलशन, लक्की। आसाम शू आपने कन संदेश मिलियो है हितेंद्र दास को। आदर्श नगर बठिंडा शू फरमाइश भेजी आपने अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर। महाराष्ट्र जालना शू विजय पाटिल। पित्रामल जिला उज्जैन बोरखेड़ा मध्य प्रदेश शू फरमाइश आई है आपने गन विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाटा, दीक्षा कुश मुणत। अगलो संदेश मिलियो आपने गांव कालाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ शू फरमाइश भेजी है विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, कृष्ण मायल, कीडू राम जोईया, हनुमान सहारण और सुनील पाईवाल शर्मा। अगली फरमाइश भेजी आपने अमरपुरा जालू खाट शू जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति, राजेंद्र प्रजापत, हरीश चंद्र पूनिया। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला शू संदेश भेजो आपने रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। बठिंडा रोड मंडी डबवाली शू संदेश भेजनिया है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। थारी फरमाइश पर सुनावा थाने गीत सुनियो सा।

अगलो संदेश जी को अपने तई पुगतो हुए है। साजी मॉडल टाउन करनाल छू भेजो है सुधीर नूतन संदीप गुगलानी जगमोहन प्रजापति किरण ठाकुर बिपाशा शर्मा। अगलो फरमाइश आपने कन आई है पलारी छत्तीसगढ़ छू भेजन आला है नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर पूना राम देवांगन कृष्णा देवांगन भोपालगढ़ राजस्थान छू राजेश दिवराया किशन सोनाक्षी आरती जय किशन विजय गीता बरवड़। बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका छू रतन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा डॉक्टर मदनलाल वर्मा। बाजार रोड मुंगीसापुर छू आपने कने फरमाइश पूगती हुई है भेजन आला है मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा सबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यस मंसूरी। वीरवाणा छू फरमाइश भेजी है अपने जगदीश शर्मा कालूराम प्रजापति अमरपुरा जालूखाट छू जगदीश चंद्र प्रजापति विमला प्रजापति मोनू प्रजापति राजेंद्र प्रजापत हरीश चंद्र पूनिया। तहसील भादरा अनूप शहर छू गजानंद सारस्वत डॉक्टर ताराचंद सारस्वत सोनू पवन कुमार साहिल राघव मुरारी लाल शर्मा मदन लाल शर्मा फुसा रम मील महावीर लोहरा ममता मीतू किनू भवनलाल सोलंकी। अगली फरमाइश आपने कनाई है भोपाल मध्य प्रदेश छू भेजन आला है मनीष श्रीवास्तव हर्षिता श्रीवास्तव विमल श्रीवास्तव आशा राधिका और आंगो पूरो परिवार। चक एक पी अनूपगढ़ छू गुरबचन बेदिल राज बेदिल नांदेल महाराष्ट्र छू नारायण गायकवाड़ दयानंद गायकवाड़ ओमकार गायकवाड़ साई गायकवाड़। कंवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश छू प्रवीण श्रीमाली मीना श्रीमाली। अगलो संदेश आपने कन पुगतो हुए है कलानोर छू भेजन आला है नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा। अगलो संदेश पुगतो हुए अपने बीकानेर छू भेजन आला है रानी झांब बिट्टू झांब। गांव भागसर छू ताराचंद वर्मा आपकी फरमाइश भेजी है सुनावा थाने ओ गीत।

0: भारत में सर्वप्रथम और आज भी सर्वश्रेष्ठ असली भरोसेमंद मोनो जिंक बनाने वाली 48 वर्षों से किसानों की खुशहाली हेतु समर्पित दयाल फर्टिलाइजर्स अब धान उत्पादकों किसान भाइयों के लिए लेकर आई है धान प्रधान और धरती गोल्ड। अधिक पैदावार और उत्तम क्वालिटी के लिए एक बार जरूर प्रयोग करें और पाएं कम कीमत में ज्यादा मुनाफा, क्योंकि दयाल का है सपना, खुशहाल हो हर किसान अपना।
1: सुनियो गीत और संदेश, अब आपने तई कई मेल पुगता होया है। राइयां वाली थर्मल सुरतगढ़ छू फरमाइश भेजी है मुकेश कुमार सिकरिया बंसीला।

सिकरिया, मुकंद सिकरिया, राधिका सिकरिया। अगली मेल मिली आपने चक 3 RWM रावत सरन मानगढ़ छूँ। भेजनवाला है मोहनलाल मोयल, गोपीराम मोयल, राकेश कुमार मोयल, मनीराम, अनुज, मनीष, अलका, मंजू, कनिष्का, अर्चना, रिया, दीपिका, सोनाक्षी, हर्ष, चिराग, मुकंद, राधिका। अगलो संदेश मिल्यो आपने चक 7 DBN भादुवाली छूँ। भेजन वाला है टेक चंद चारण, संतोष देवी, सत्य प्रिय चारण, जय सिंह, योगेश्री, रणजीत सिंह सुथार, गुरदेव सिंह, हरनेक सिंह। अगली फरमाइश मिली आपने लखवाली छूँ। भेजन वाला है भंवरलाल, कृष्णा, सौरभ, विशाल, ममता, राजबाला, नव्या, लक्षिता, मोहम्मद रफीक। संगरिया छूँ मुकनाराम, महावीर लोहरा। कनवाली रावत सर छूँ आपने फरमाइश भेजी है कृष्ण सियाग। अगली फरमाइश आपने कन आई है चेतराम शर्मा की। भेजो है 82 RB शू आगे सागा है चेतन राम सारस्वा, नौरंग राम सारस्वा, बांसुरी वादक प्रदीप सारस्वा, ज्योति सारस्वा, ममता सारस्वा, नानू देवी सरस्वा, प्रवीण, सुनील डाल, सोन जांगीड, धनराज बाम्बू। अगली मेल मिली है अपने गांव खरकड़ा 24 ईशू। भेजन वाला है गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट, तमन्ना कांगड़ा। थारी फरमाइश पर सुनावा ओ गीत।

सुनियो गीता रो गजरो, अबे समय आज इतो ही, मैं चलूं राम राम सा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल में गीतारु गजरो। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के काटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 8 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा अनुप्रसारित की जाएगी।

आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनुवारुल हक। लोकसभा की कार्यवाही आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित रही। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज सदन में फिर हंगामा किया, जिससे प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य लोग गृह मंत्री के नाम का नारा लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया, तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं, लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने

उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृह मंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहां चर्चा होगी, गृहमंत्री अमित शाह जब यहां जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहां निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। इसका पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक हैं, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1200 अन्य अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगभग 303 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए एआई और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों के भुगतान से पहले जांच 31 जुलाई 2026 तक 676 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना देश की आबादी के निचले 40% हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। ये योजना

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5,000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8,400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मानसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृह मंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सुलता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और ओडिशा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को जीआई टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है।

लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है।

0: विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की, लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कलवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉ. एम थंबी दुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थंबी दुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया, लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 8:15 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। आज की फिल्म है प्रेम रोग। प्रेम रोग फिल्म 1982 में बनी राज कपूर द्वारा निर्देशित एक प्रसिद्ध हिंदी संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य कलाकार ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे हैं। इस फिल्म के गीत पार्श्व गायक सुरेश वाडेकर ने गाए हैं। आज प्रेम रोग फिल्म में सुरेश वाडेकर के गाए गीत सुनेंगे, क्योंकि आज ही के दिन 7 अगस्त 1955 को इनका जन्म हुआ था।

श्रोताओ, प्रेम रोग फिल्म के गीतों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया। इस फिल्म के सभी गीत बहुत लोकप्रिय हुए। आइए इन्हीं का संगीत बद के गीत सुने, सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की आवाज़ों।

अभी आप सुन रहे थे प्रेम रोग फिल्म के गीत। कार्यक्रम था एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। हम आकाशवाणी के कार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैंट।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में तितली मांझी ने जीता रजत पदक। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आर प्रज्ञानंद ने जीता सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब। एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में मोहम्मद अशफाक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। AHF जूनियर एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष टीम का ऐलान, अनमोल एक्का बने कप्तान। और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, खिलाड़ी केंद्रित शासन और खेल तंत्र में संस्थागत सुधारों का आह्वान किया। भारोत्तोलन से, जहां तितली मांझी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के नाम पदक किया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता के पहले दिन तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन के साथ ये पदक हासिल किया। और श्रोताओं, आपको बता दें कि इसी स्पर्धा में परिष्मिता गोगोई 141 किलोग्राम के कुल वजन के साथ चौथे स्थान पर रही। परिष्मिता स्नैच में 65 और क्लीन एंड जर्क में 76 किलोग्राम वजन ही उठा सकी। ये प्रतियोगिता 14 अगस्त तक खेली जाएगी और उम्मीद करें कि जितने भी भारतीय खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं वो अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतें। और अब रुख कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज रक्षिता ने तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने हिना केची को हराया। अश्मिता और रक्षिता सेमीफाइनल में कल आमने सामने होंगी। सुनते हैं हमारे सहयोगी विशाल की रिपोर्ट।
1: विश्व में 50वें नंबर की खिलाड़ी अश्मिता ने टूर्नामेंट का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त हिना अकेची को 20-22, 21-15, 21-19 से पराजित किया। हिना ने अच्छी शुरुआत करते हुए 7-5 की बढ़त बना ली, जिसके बाद अश्मिता ने स्कोर 7-7 से बराबर कर दिया। लेकिन भारतीय खिलाड़ी की कुछ गलतियों से जापान की खिलाड़ी ने इंटरवल तक 11-9 की बढ़त हासिल कर ली। अश्मिता ने हालांकि कड़ी चुनौती पेश की, उन्होंने 12-12 और फिर 15-15 पर स्कोर बराबर कर लिया। इसके बाद उन्होंने 17-15 और 18-16 से बढ़त भी बना ली। हालांकि हिना ने यहां एक बार फिर वापसी की और पहला गेम जीत लिया। दूसरे गेम में अश्मिता ने जोरदार वापसी की, स्कोर 7-7 से बराबर होने के बाद उन्होंने

0: लगातार 6 अंक जीतकर 13-7 की बढ़त बना ली। हालांकि हिना ने अंतर को कम करके 14-16 कर दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने संयम बनाए रखा और अगले 6 में से 5 अंक जीतकर मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। निर्णायक गेम भी कुछ इसी तरह चला, जिसमें अश्मिता ने 9-3 की बढ़त बनाई और इंटरवल तक 11-9 की बढ़त बरकरार रखी। उन्होंने इसे 18-11 तक जरूर पहुंचाया, लेकिन हिना ने फिर जोरदार वापसी की और लगातार 6 अंक जीतकर अंतर को 17-18 तक कम कर दिया। अश्मिता ने अंतिम क्षणों में अपना बनाए रखा और यादगार जीत हासिल की। उधर रक्षिता ने एक गेम से पिछड़ने के बाद बेहतरीन वापसी करते हुए तीसरी वरीयता प्राप्त और अपनी ही देश की तन्वी शर्मा को 1 घंटे से अधिक समय तक चले मुकाबले में 18-21, 21-19, 21-18 से पराजित किया। तन्वी के खिलाफ ये उनकी चौथी जीत है। पहले गेम में रक्षिता ने 13-8 की बढ़त बनाई, लेकिन तन्वी ने शानदार वापसी की और अगले 9 में से 8 अंक हासिल किए और स्कोर को 8-13 से 16-14 तक ले जाने के बाद गेम अपने नाम कर लिया। दूसरे और तीसरे गेम में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों ने एक दूसरे से आगे निकलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तीसरे और निर्णायक गेम के आखिर में तन्वी की 3 गलतियां उन्हें भारी पड़ गईं। रक्षिता ने इसका फायदा उठाया और तीसरा गेम और मैच अपने नाम कर लिया। हालांकि कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्ण मूर्ति रॉय की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी मलेशिया के मान वेई चोंग और सो वोई यिक से 7-21, 8-21 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: आज का मुकाबला श्रोताओं काफ़ी दिलचस्प रहा। तन्वी शर्मा पर सबकी निगाहें थी, लेकिन आज रक्षिता से हारकर वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हाल ही में उन्होंने ताइपे ओपन का खिताब भी अपने नाम किया था, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इस प्रतियोगिता में भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, लेकिन रक्षिता ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। और अगर हम रक्षिता की बात करें तो 2024 में स्लोवानिया ओपन BWF इंटरनेशनल खिताब उन्होंने अपने नाम किया है और वियतनाम इंटरनेशनल चैलेंजेस में भी उनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहा है। और अगर उनकी प्रतिद्वंदी की बात की जाए, जो कि अश्मिता चालिहा है, जिन्होंने 2018 में टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल चैलेंजर्स में महिला सिंगल्स का खिताब जीता था। इसके अलावा दुबई इंटरनेशनल चैलेंजर्स में भी महिला सिंगल्स में उन्होंने जीत दर्ज की और 2019 के दक्षिण एशियाई खेल में सिंगल्स और टीम स्पर्धा दोनों में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता। मालदीव इंटरनेशनल चैलेंजर जो कि 2023 में हुआ था, उसमें भी महिला सिंगल्स का खिताब उन्होंने अपने नाम किया। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा खिलाड़ी जीत दर्ज करता है और फाइनल में अपनी जगह बनाता है। और अब बात करते हैं शह और मात का खेल शतरंज पर। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में प्रज्ञानंदन ने 1 राउंड बाकी रहते ही जावोखीर सिंदारोव को हराया। आइए सुनते हैं खिताबी मुकाबले पर ये रिपोर्ट।
2: प्रज्ञान आनंद और उज्बेकिस्तान की जावोखीर सिंदारोव के बीच आखिरी मुकाबले का अंत ड्रॉ पर होने के साथ ही भारतीय ग्रैंड मास्टर का खिताब पक्का हो गया। 20 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने कुल 35 में से 23 अंक हासिल कर चैंपियनशिप अपने नाम की। सिंदारोव ने 22 पॉइंट के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि वेस्ली सो 20.5 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। लेवन एरोनियन चौथे स्थान पर रहे और फैबियानो करुआना, लीनियर डोमिंगवेज और जॉर्डन वैन फॉरेस्ट 17 पॉइंट के साथ संयुक्त रूप से 5 स्थान पर रहे। इस जीत से प्रज्ञान आनंद सिंगफील्ड कप के पहले ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि फैबियानो अभी भी ओवरऑल ग्रैंड चेस टूर स्टैंडिंग में सबसे आगे हैं। प्रज्ञान आनंद ने 5 दिन के इस इवेंट में शुरू से आखिर तक बढ़त बनाए रखी। सिंदारोव ने आखिरी दौर में कड़ी चुनौती पेश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए और 1.5 पॉइंट के अंतर से उपविजेता रहे। मैच के बाद प्रज्ञान आनंद ने कहा कि इस प्रतियोगिता से मेरे गेम में सुधार हुआ है।
3: Feels great. And when you see the score, it's like 1.5 round to spare. Everything looks smooth, but wasn't the case. It was crazy. I mean, kudos to Javakir. He kept the fight till the end. Yeah, he was also fighting really well. So, I mean, just basically what I said yesterday, not to do anything stupid myself, but then I managed to do it against Avander in the second game where I was just, you know, I had so much control and I was just winning. But and then I managed to basically not take the draw and then I lost the game, which is exactly what I wanted to avoid. I mean, even though I lost the game, I felt my game quality. everybody was okay. Yeah, I was just trying to calm myself, and I also wanted to like win it separately. I wanted to win the rapid and blitz separately, which I think I managed. So that's also good.
2: Tournament में 10 बेहतरीन grandmaster शामिल हुए थे. 5 दिन के खेल में खिलाड़ियों ने 9 rapid round और 18 blitz round खेले. इस दौरान कुल मिलाकर 135 गेम हुए, जिनमें सिंगफील्ड कप और GCT ग्रैंड फाइनल से पहले महत्वपूर्ण टूर प्वाइंट दांव पर

0: थे मुकेश कुमार स्पोर्ट्स कैन।
1: और श्रोताओं आपको बता दें कि ये साल प्रज्ञानानंद के लिए बेहतरीन रहा है। इस वर्ष ही जून में उन्होंने नॉर्वे चेस खिताब जीतकर पहले भारतीय बने थे जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया था और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। और अब चलते हैं एथलेटिक्स की ओर। अमेरिका के यूजीन में आयोजित एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में मोहम्मद अशफाक ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में अंडर 20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर चैंपियनशिप के अगले दौर में क्वालिफाई किया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: 19 वर्षीय अशफाक पहले दौर की हीट 5 वर्ग में 45.81 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अमेरिका के जेडन डी लियोन 45.63 सेकंड के साथ शीर्ष स्थान पर रहे। अशफाक ने चौथे स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस दौरान अशफाक ने इस वर्ष अप्रैल में बनाए गए अपने ही पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 46.05 सेकंड को भी बेहतर किया। महिलाओं की चक्का फेंक के फाइनल में 18 वर्षीय कम्बोज 53.24 मीटर के थ्रो के साथ छठे स्थान पर रही। चीन की सू यिक्सन पहले और अमेरिका की जैसलीन मैसी दूसरे स्थान पर रही। पुरुषों की ऊंची कूद में बसंत ने क्वालिफाइंग राउंड में 2.14 मीटर की कूद लगाकर 5वां और कुल मिलाकर 11वां स्थान हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शशांक कुमार स्पोर्ट्स कैन।
1: अश्रोता आपको बता दें कि तनु चौधरी अपने हीट में 5वें और कुल मिलाकर 33वें स्थान पर रहने के बाद महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाने में असफल रही। वहीं अमित कुमार ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में 8वां और अंतिम स्थान हासिल किया। पी रोशन और धनुष राज दोनों ही पुरुषों की ट्रिपल जंप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। और अब बात हॉकी की कर लेते हैं। हॉकी इंडिया ने AHF जूनियर एशिया कप के लिए आज भारतीय पुरुष टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान अनमोल एक्का के हाथों में सौंपी गई है। यह प्रतियोगिता चीन के मोकी में 30 अगस्त से 13 सितंबर तक खेली जाएगी। टूर्नामेंट के लिए 18 खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है जबकि 2 वैकल्पिक प्लेयर्स को भी टीम में रखा गया है। सुनते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है।
3: डिफेंडर अनमोल एक्का की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने हाल ही में बेल्जियम का एक शानदार एक्सपोजर दौरा पूरा किया जहां टीम की भिड़त मजबूत इंटरनेशनल टीमों से हुई थी। इस दौरे से खिलाड़ियों को मैच का अनुभव और अहम सीख मिली जिससे टीम अपनी प्रगति का आकलन कर सकी, अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बना सकी और AHF जूनियर एशिया कप से पहले अपनी तैयारियों को और मजबूत कर सकी। टीम बेंगलुरु में साई सेंटर पर मलेशियाई अंडर 21 टीम के साथ फ्रेंडली मैच खेलकर और भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी अनुभव हासिल कर रही है। टीम के चयन पर बात करते हुए कोच सोयस ने कहा कि ये टूर्नामेंट एशिया की प्रमुख जूनियर हॉकी प्रतियोगिताओं में से एक है जो महाद्वीप की शीर्ष उभरती टीमों को एक बेहद प्रतिस्पर्धी माहौल में एक साथ लाती है। ये प्रतियोगिता भारत की युवा टीम को एशिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के खिलाफ खुद को परखने और अपनी मजबूत छाप छोड़ने का मौका देगा।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों के चयन में अधिक पारदर्शिता, खिलाड़ी केंद्रित शासन और देश के खेल तंत्र में संस्थागत सुधारों का आह्वान किया। आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खेल महासंघ सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सभी हितधारकों के लिए खिलाड़ियों के हित और कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। डोपिंग के मुद्दे पर डॉक्टर मांडविया ने भारतीय खेलों से इस खतरे को खत्म करने के लिए एक व्यापक रणनीति का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्रवाई केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए और निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, सुविधादाताओं और उपयोगकर्ताओं सहित पूरी श्रृंखला से एक पारदर्शी और मजबूत तंत्र के माध्यम से निपटा जाना चाहिए। खेल मंत्री ने भारत के स्वदेशी कोचिंग तंत्र को मजबूत करने और विदेशी प्रशिक्षकों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अनुपालन, सुशासन प्रथाओं और एशियाई खेल 2026, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 और राष्ट्रमंडल खेल 2030 के लिए भारत की तैयारियों की समीक्षा की गई। और अब बात गोल्फ पर। स्नेहा सिंह ने तमिलनाडु के होसुर में हीरो महिला प्रो गोल्फ टूर के 11वें चरण का खिताब अपने नाम किया। स्नेहा ने 6 शॉट की बढ़त गंवाने के बाद प्लेऑफ में वापसी करते हुए वाणी कपूर को हराया। स्नेहा ने दूसरे दिन 10 अंडर का कार्ड खेला और अंतिम दिन 5 ओवर 76

0: का कार्ड खेला। अब कार्यक्रम में बात उस खिलाड़ी की जिसने अपने स्विंग गेंदबाजी से विश्व के कई बल्लेबाजों को छकाया है। धारदार गेंदबाज और भारत के लिए हैट्रिक लेने वाले दीपक चहर का आज जन्मदिन है। 2018 में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने वाले चहर ने 13 एक दिवसीय में 16 विकेट लिए हैं और 2 अर्धशतक लगाते हुए 203 रन बनाए हैं। वहीं 25 टी20 में उन्होंने 31 विकेट झटके हैं। चहर ने 2016 से अब तक IPL में 96 विकेट अपने नाम किए। दीपक ने पुरुष टी20 क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ नागपुर में मात्र 7 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए थे।
1: So much riding on this ball. It's a hat-trick ball. He gets a wicket with the best figures ever in T20 cricket. And he does! It's a hat-trick. It's the best figures ever in T20 internationals. For Deepak Chahar, he's finished 6 for 7. The first Indian to take a hat-trick, he set all kinds of landmarks. Well done, Deepak Chahar.
0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
4: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज

0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पे निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
2: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार।

0: के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
1: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। दो दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फंड के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
5: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
6: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत में चंदन दास को।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आइए श्रोताओं, सुगम संगीत के आखिर में सुने चंदन दास के स्वर में यह गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार थे चंदन दास। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:30 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है पंजाबी साप्ताहिक प्रोग्राम मिट्टी दी खुशबू।

हाँ जी दोस्तों, फुल ते खुशबू अज मिल के महफिल करवाउण लगे ने। धरती तो लई इजाजत सुफने रंगवाउण लगे ने। बदलां ने बंदोबस्त भी कीते ने सारे उमदा, धुप होरी लौण कनातां मौसम भी गाउण लगे ने। फुल ते खुशबू अज मिल के महफिल करवाउण लगे ने। आह वाह, किन्ने खूबसूरत अल्फाजां बिंबां ते ख्यालां दे नाल सतेंद्र सरताज ने रचिया एक गीत, बहुत ही खूबसूरत। ते हुण दोस्तो, एवजे ही ख्यालां शब्दां नाल जज्बातां नाल लबरेज लिखे थोड़े खत पहुँचिया, आओ शामिल करिए। अब पहला खत पहुँचिया बागपत उत्तर प्रदेश तो संजय ढींगिया, नमन ढींगिया ते अपार ढींगिया दा। इन्हां नूं भी प्रोग्राम पसंद आ रहा, इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। ते खत पहुँचे अपने कोल लिखण वाले आ रणजीत सोलंकी, परमजीत कौर, विष्णु, राजवीर सोलंकी, रमन राठौड़, जस्सू पमार, जगवीर सोलंकी। इन्हां ने लिखिया वा आरायण वार्ड नंबर 12 तो। ते गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव बीका, बलविंदर विरक, जयतंग विरक ते मीका विरक का खत भी पहुँच गया, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। ते मुहम्मदपुर सोत्र ढाणी रतिया तो, जीवन सिंह बूक, शंटी बूक, सिमरन बूक, कौशल्या राणी, गुरछिंदर, कुलदीप, कीरत बूक, भूषण खेड़ा, जशन बूक ते इन्हों का पूरा परिवार, इन्हों भी प्रोग्राम पसंद आ रहा, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। ते डी एल एफ कलोनी रोहतक तो महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र शाह, मानसी शाह, पेंड कुड़ियाणा जिला फाजिलका तो मलकीत सिंह कुड़ियाणा, मनजीत कौर, दुपिंदर सिंह बराड़, गुरशब्द सिंह बराड़ का खत भी पहुँच गया,

हाँ जी दोस्तों, मच्छरदानी लै देवी, मच्छर ने खाली तोड़ के। बड़े प्यारे गीत आ, बड़े सोहने गीत लगते आ इन्हां मौसमां दे विच। ते वट्सअप सुनेहा पहुँचा दोस्तों अगला अपने कोल कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र तो, गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी ते राजेश, राकेश, रिशिता, इन्हां नूं प्रोग्राम पसंद आ रहा, इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। ते अलीकां तहसील डबवाली तो रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरबजीत लखोत्रा, राणी सोनू ते रजनी, ते गुजरात गांधी ग्राम तो प्रवीण सोनी, पायल, पूजा, जगदीश चोरी, इन्हां नूं प्रोग्राम पसंद आ रहा, इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। ते इसे तरह सोलापुर महाराष्ट्र तो गणेश लोड़े, आम्रपाली ते आरव, ते चांदूर फिसवा जिला बुलडाणा तो महाराष्ट्र तो किशोर वानखेड़े, उषा विशाल, राज गवई, राजवीर गवई, इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। ते इसे तरह नरगोड़ा छत्तीसगढ़ तो महाराज, कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, योगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी ते दिशा गोस्वामी का भी सुनेहा पहुँच गया वा, इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। पिपरिया तो कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमजिम गुप्ता का भी सुनेहा पहुँचा। ते जसपुर उत्तराखंड तो रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर का भी अपने कोल सुनेहा पहुँचा। ते अमरावती महाराष्ट्र तो प्रवीण हागोणे, योगिता हागोणे, प्रियाली पार्थ, ते इन्हां दा पूरा परिवार। ते इसे तरह जी टी बी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब तो मुहम्मद अनवर, रवीना, आफिया, सना, हिना, शकीला, जैस्मिन, राजिया सुल्ताना, अख्तर अंसारी, सुराज, मुहम्मद जावेद अंसारी, इन्हां नूं प्रोग्राम पसंद आ रहा, इन्हां दा भी शुक्रिया। ते मुजफ्फरपुर बिहार तो आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार का भी सुनेहा पहुँचा। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला तो रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द राहुल का भी अपने कोल सुनेहा पहुँचा। इन्हां नूं आपां जी आया कहने आ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं इन्हां दा भी। ते कस्बा कुन्नौर यूपी तो फारूख अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया ताहिरा का भी सुनेहा पहुँचा। हनुमानगढ़ टाउन तो सुल्तान सिंह तड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी, ते चक 14 पी एस बी तो कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण, हरदीप सिंह, मनराज, कहिंदे सत श्री अकाल सारे सुनने वालों, प्रोग्राम बहुत वधिया चल रहा वा। कुलदीप सिंह जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम दे विच हाजरी लवाउण वास्ते। ते गांधीनगर गुजरात तो सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल ते निशा, नागपुर महाराष्ट्र तो कमल साणी, पिंकी साणी, अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, निप्पी साणी ते सुनीता साणी, इन्हां नूं भी प्रोग्राम पसंद आ रहा वा। ते नलेश्वर नगर, नरवैल जिला बुलडाणा तो पी एस नाहवानकर, निर्मला नावकर, विशाल, ते डोंगरगांव छत्तीसगढ़ तो राष्ट्रपाल गजपीए, राधिका बेबी अनिष्का ते तनमे गजपीए, हिंगोली महाराष्ट्र तो शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान ते उत्तम जमदाड़े, ते बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ तो रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता ते डिंपल देवांगन का भी अपने कोल वट्सअप सुनेहा पहुँचा वा। ते एमएलबी रोड ग्वालियर तो सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्वे आरव, मेगा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु छोटू, एस पी पप्पी का, एस के पप्पी खुराना का भी अपने कोल सुनेहा पहुँचा। तो फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला जिला चूरू राजस्थान तो संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोनम सोमल, कार्तिक सोनगरा, तो विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, किरसन मायल, कीड़ूराम जोईया, हनुमान सरण ते सुनील भाईवाल का भी अपने कोल सुनेहा पहुँचा वा। लिखा वा इन्होंने कलाणा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

तो इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह कासगंज उत्तर प्रदेश तो योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत, तो इन्हों सुरेश चोरसिया, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पलारी छत्तीसगढ़ तो नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम, कृष्ण देवांगन। तो अगला सुनेहा पहुँचे अपने को गोगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश तो उस्मान खत्री, रिजवान खत्री, अब्दुल गफ्फार खत्री, इन्हों का बहुत बहुत शुक्रिया। संबलपुर काकेड़ तो फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी। तो नाभा पटियाला पंजाब तो सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी, गुरमंत कौर, मनू, इन्हों का भी शुक्रिया। तो अगला सुनेहा पहुँचे अपने को पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसर, कश्मीर तो पहलगाम कश्मीर तो जनकपुरी सहारनपुर तो जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पारल ते विलिस डिकेस्ट्रो ने भी आपां नूं सुनेहा पाया, इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्ण लाल कालवा लिखा वा इन्हां ने गोलू वाले तो, इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुड़ी सैक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर तो रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित ते बेबी गर्वी, तो इन्हां दे नाल हिमांश, इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरह हिंगली आलोट जिला रतलाम तो जगदीश धाकड़, नायमा, रंजूबाई, युवराज सिंह धाकड़ ते शिवांगी धाकड़ दा, ते अनूपगढ़ तो भगवती देवी, ज्ञानचंद, मेहुल, पूनम, कोमल, चंदन, अंकुश, रवि कुमार, लक्ष्य, माधव का भी अपने कोल सुनेहा पहुँच गया वा। तो बाबा कुटीर रायगढ़ तो शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, उत्कर्ष चौहान का भी पहुँचा। तो बरली मुंबई तो नवाब खान, इशरत जहां, अजहर खान, तो अशीम खान, तो चाईबासा झारखंड तो शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि, तो दीपाली गोप का सुनेहा भी पहुँच गया वा। तो इस तरह दोस्तों आ सुनेहा पहुँचे अपने को वट्सअप के माध्यम के नाल। सूरतगढ़ तो सुरजीत सिंह, लेखराज सिंह, पवन कुमार, रवि कुमार, तो कुंदन लाल शाके का, इन्हों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी सारे दोस्तों का। आओ प्रोग्राम के अगला खूबसूरत गीत सुनिए।

ऐसे गीत दे नाल हुण अपने दोस्त दुर्गा राम नायक नूं मिट्टी दी खुशबू प्रोग्राम तों दवो इजाजत। रब राखा, शब्बा खैर।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी साप्ताहिक प्रोग्राम मिट्टी दी खुशबू। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुने, लता मंगेशकर की आवाज़ में। रचना साहिल लुधियानवी की है और संगीत रवि का है। फिल्म का नाम है आँखें।

अभी आपने संगम फिल्म का गीत सुना, आइए सुने शोर फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है संतोष आनंद ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुने। रचना हसरत जयपुरी की है और संगीत शंकर जयकिशन का। आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। फिल्म है पगला कहीं का।

आइए श्रोताओं अब सुने मर्यादा फिल्म का गीत मुकेश की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुने।

अभी अपने मर्यादा फिल्म का गीत सुना। आइए श्रोताओं अब सुने मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है हम दोनों, गीत साहिर का है और संगीत जयदेव का। आइए सुने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के काटनसरी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध

0: आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से में बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both houses of parliament today witnessed opposition's uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the knee tissue. Both the houses of parliament once again faced disruptions following opposition's uproar over several issues, including police action during students' protest over the knee tissue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition's uproar, question hour could not be taken up in both the houses.